0: You're tuned into CMR at 8. Dil se. एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ. हर शाम दिल से.
1: मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 9 PM सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो पर.

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. और फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं, जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AAG से और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan. गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: ये है राजधानी
1: स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: CMR at 8 दिल से एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
4: हर शाम दिल से
3: मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 9 PM सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो पर।

0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माई मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल, विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: CMR at 8 दिल से एक घंटा बेहतरीन म्यूजिक, दिलचस्प बातें और आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ।
4: हर शाम दिल से
3: मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 9 PM सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो पर।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: God loves us and he wants us well. It doesn't matter where you are and it doesn't matter what case it is.
4: This is Healing Streams, where anything is possible.
3: You are in the presence of a miracle.
5: You are in the place where grace abounds.
3: This July, it's about to happen with you.
6: Join us this Saturday, July 25th at 9 a.m. for a powerful on-site healing crusade with Pastor Chris at the Healing Streams Live Healing Services. Come to 2360 Mill Race Court in Mississauga, Ontario. Bring the sick with you. Let them receive healing. Register for free at www.healingstreamstv.com/zone/CANZ. Or simply call 647-678-1050. See you there.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: खाली खाली थिएटर होना चाहिए,
1: मोटरबाइक पर जाना चाहिए,
0: अरे बार बार ब्रेक लगाना चाहिए,
1: हमेशा अलर्ट होना चाहिए,
0: थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट होना चाहिए,
1: लव होना चाहिए,
0: सब होना चाहिए,
1: रोमांस होना चाहिए।

0: की राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210।
3: आप सुन रहे CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM। Stay tuned।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: God loves us and He wants us well. It doesn't matter where you are and it doesn't matter what case it is.
3: This is Healing Streams, where anything is possible.
2: You are in the presence of a miracle. You are in the place where grace abounds. This July, it's about to happen with you.
4: Join us this Saturday, July 25th at 9 a.m. for a powerful on-site healing crusade with Pastor Chris at the Healing Streams Live Healing Services. Come to 2360 Mill Race Court in Mississauga, Ontario. Bring the sick with you. Let them receive healing. Register for free at www.healingstreamstv.com/zone/CANZ or simply call 647-678-1050. See you there.
5: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार. ये टाइम है टोयोटा का. लीज़ अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan, but ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवॉन्टेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: वही डेली रूटीन में फंसे हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ब्रांच डिपार्चर रिसोर्ट। ये फेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: 1-800-FLEXI8। कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ.
5: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार. ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विथ $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
6: God loves us and he wants us well. It doesn't matter where you are and it doesn't matter what case it is.
7: This is Healing Streams where anything is possible.
6: You are in the presence of a miracle. You are in the place where grace abounds. This July, it's about to happen with you.
8: Join us this Saturday, July 25th at 9 a.m. for a powerful on-site healing crusade with Pastor Chris at the Healing Streams Live Healing Services. Come to 2360 Mill Race Court in Mississauga, Ontario. Bring the sick with you. Let them receive healing. Register for free at www.healingstreamstv.com/zone/CANZ. Or simply call 647-678-1050. See you there.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint Money Transfer Services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves. गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम. जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं. सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी. विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोप नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795. 4167463795. एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत. विजिट एशियागोल्डिंग.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today।

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: God loves us and he wants us well. It doesn't matter where you are and it doesn't matter what case it is.
2: This is Healing Streams, where anything is possible.
1: You are in the presence of a miracle. You are in the place where grace abounds. This July, it's about to happen with you.
3: Join us this Saturday, July 25th at 9 a.m. for a powerful on-site healing crusade with Pastor Chris at the Healing Streams Live Healing Services. Come to 2360 Mill Race Court in Mississauga, Ontario. Bring the sick with you. Let them receive healing. Register for free at www.healingstreamstv.com/zone/CANZ. Or simply call 647-678-1050. See you there.
4: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call kare 416-284-7000. 416-284-7000.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टिपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टिपाटू रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। सो कॉल टुडे एट 705-378-2210 705-378-2210।
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड. एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड. न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड.
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और बहुत ही अमेजिंग प्यारे से गीत से हमने दिन की शुरुआत की है और एंटरटेन करेंगे आपको ऑल द वे टिल 2 PM। आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट ज़रूर प्ले करेंगे एंड आज है बॉलीवुड फ्राइडे, सो काफ़ी रिक्वेस्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, वी विल बी प्लेइंग देम एज वेल। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, रियली सनी दिस वीकेंड। टुडेज़ मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. The segment is brought to you by Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, Clear Optical by Varun Kanda, Win Lifetime Trading, Kavya Homeo Care, as well as McBean Dental Care se Dr. Raj Gill. Aage chalkar Brampton TV and Appliances Sultan ji hamare saath honge with some amazing deals, TV appliance laundry ki deals for this weekend. And again, studio ka number 416-593-0055। शो के बाद बातचीत करनी है या ऑफ एयर बात करनी है तो आप 647-863-1940 के जरिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: ਕਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਮਦਾਰ ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ ਇੰਜਨ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਲ ਹਾਊਸ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ, ਹਰ ਖਾਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $120 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.79% APR ਤੇ $4,900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
2: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी, याद है, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
6: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
7: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
8: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.

0: मेरी जिंदगी थी वो।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रिप। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? लुकिंग फॉर ओसैट ग्रांट? वंडरिंग इफ यू क्वालिफाई और नॉट? कई कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी के लिए कॉल अलका 416-505-2735। कॉलेजेस के एडमिशन से एप्लीकेशन प्रोसेस तक अलका विल हेल्प यू फॉर एब्सोल्युटली नो चार्ज, नो फीस। कॉल अलका 416-505-2735। 416-505।
3: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
1: Hyundai का Next Starts Now sales event चल रहा है Don Valley North Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
4: Don Valley North Hyundai, doing
5: a proud member of Wayne's Auto Group.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
10: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
9: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
11: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
1: Family travel ko banaye effortless with the Lexus TX350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined, aur har drive ke liye ready. Quick refueling ke saath, bina charging delays ke. Welcome back offer, aur 10 MSDs ka advantage lijiye, aur lease kijiye TX350 luxury package for $799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury ka experience lijiye, bina wait ke. A proud member of Wayne's Auto Group.
3: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
1: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस RZ या ES इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम EV एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें 1-on-1 EV डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wayne's Auto Group.
5: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.

0: Hyundai का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ Hyundai पर। अब सिक्योर करें साल के लोस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31 तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट डॉन वैली नॉर्थ Hyundai.com या Woodbine Avenue एंड Denison Street, Markham पर।
1: Don Valley North Hyundai,
2: a proud member of Wayne's Auto Group.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा. आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से. बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम. टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए. बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे. वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड. इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com. लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Joshi.
1: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
2: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
1: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
3: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
4: कदे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप दे मुश्किल रस्तियां ते ट्रेलर टो कीता सी ते आज ओही कमाल दी टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोवर नू दोस्त दे कर ले जान लई है टोयोटा टंड्रा वड़े मोमेंट्स होन जा निकियां मूवमेंट्स हर हॉल दे लई दमदार एह टाइम है टोयोटा दा लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स एसआर $154 वीकली तो 36 मंथ्स लई 3.99% APR ते $5800 डाउन दे नाल हाइब्रिड उपलब्ध है विजिट shoptoyota.ca जा आज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को जाओ
5: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940
6: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं
7: हाँ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे
6: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ
7: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं
6: दैट्स वंडरफुल
7: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा
6: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है
7: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस
8: Welcome back, friends. एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन 905-450-2828 इज द नंबर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान सुल्तान जी हमारे साथ हैं स्टोर इज ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM to 7 PM सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर रुख करते हैं एंड दैट इज द टीवी सेक्शन वो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट आई फील इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान जी आपका स्वागत है
9: थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई और इंपॉर्टेंट मैसेज आपने इसलिए कहा है या सेक्शन की बात की है क्योंकि टीवीज में बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त डिमांड में है खासतौर पे बिग स्क्रीन टीवी की अगर बात करें या लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें मिनी एलईडी के साथ अगर लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि अपने टीवी को बिग स्क्रीन टीवी के साथ अपग्रेड किया जाए और वो भी $2300 वाला 85 इंच मिनी एलईडी आपको मिले ओनली $1599 में तो $1599 भी कस्टमर 6 मंथ में पे करेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं है $700 की सेविंग भी हो गई और 6 मंथ इजी पेमेंट प्लान भी मिल गया इसी तरह 75 इंच $1200-1300 वाला सिर्फ $899 में मिलेगा इसमें $400-500 की सेविंग भी हो गई और 899 6 मंथ में पे करेंगे जी 65 इंच $699 में मिलेगा और 55 इंच ओनली $399 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे फिर जब बिग स्क्रीन की बात करते हैं तो 98 इंच ये भी सैमसंग का 98 इंच है जो कि $3500 वाला $1999 में मिलेगा इसमें $1500 कस्टमर सेव भी करेंगे और 1999 6 मंथ में पे करेंगे जी फ्री होम डिलीवरी है इसके लिए आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com या हमारी वेबसाइट पे या फिर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905 450 2828 905 450 28 28 जी
8: 905-450-2828 Brampton TV and Appliance पर TVs पर amazing amazing amazing deals चल रही हैं. फायदा उठाइए, पहुंच जाइए जल्द से जल्द. सुल्तान जी, साथ ही साथ TVs के साथ साथ हम appliance laundry sections की भी बात करना चाहेंगे जहां पर आपने amazing deals लगाई हैं. कुछ rental properties के लिए कई बार people are looking out for some best deals, और कई बार ऐसा होता है हम अपने घर के लिए सबसे best TV appliance लॉन्ड्री में चीजें चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल आप इस पे रोशनी डालें.
9: बिल्कुल जी, अगर तो बंडल पैकेज लेने हैं, किसी के घर की क्लोजिंग आ रही है तो उन्हें तो ऑलमोस्ट $2,000 की सेविंग किचन अप्लायंसेस में होगी, क्योंकि $5,000 वाला 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है, स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टॉप की डिशवाशर है, 3 पीस का बंडल पैकेज स्टेनलेस स्टील $29.99 में मिलेगा. $2,000 कस्टमर सेव भी करेंगे और $29.99 6 मंथ में पे करेंगे जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. बंडल पैकेज लेना है जी, जिसमें आपको बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज चाहिए, तो पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला $6,900 में लेके आप ऑलमोस्ट मोर देन $5,000 की सेविंग करेंगे बिल्ट इन किचन में. इसी तरह हमारे पास लॉन्ड्री में जी, जहां टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $16,1700 वाला $10.99 में पेयर मिलेगा आपको, वॉशर ड्रायर दोनों $10.99 में, वहां फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ, प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर में $2,500 वाला $17.99 में लेके आप $800 फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव करेंगे, और $17.99 भी 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी. इसके लिए विजिट करें जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जी. 9054502828 हमारा नंबर है. सिंगल पीस फ्रिज लेना है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ, फ्रिज $1,400 वाला $799 में मिल जाएगा. सिंगल पीस वॉशर चाहिए आपको $1,000 वाली $599 में मिल जाएगी. सिंगल पीस ड्रायर चाहिए आपको $900 वाला $499 में मिल जाएगा. फ्री होम डिलीवरी, 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी. पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको वेयरहाउस क्लियरेंस सेल का आइकॉन मिलेगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक आइटम 40% और कुछ एक 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी. फॉर एग्जांपल डिशवॉशर चाहिए स्टेनलेस स्टील का $1,000 वाला डिशवॉशर, वहां आपको 50% डिस्काउंट पे $499 में मिलेगा. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट कॉम 9054502828 905-450-2828 जी.
8: बिल्कुल जी, 905-450-2828 Brampton TV and Appliances. सुल्तान जी बहुत बहुत शुक्रिया.
9: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
8: जी. 9054502828.
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wings Auto Group.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040। 647-628-0040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com
0: skylakeimmigration।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940।
6: लबों तक जो बात आए हर वो बात करना जरूरी है क्या? इश्क तो सबको हो जाता है, ये बताओ इजहार करना जरूरी है क्या? फरिश्ता बन हजार ख्वाब दिखाकर झूठे वादे करना जरूरी है क्या? रिश्तेदारी तो सब जानते हैं, ये बताओ सबको अपना कहना जरूरी है क्या? बरसों पहले जो आईना टूटा था आज वापस जुड़ने लगा तो मुश्किल है क्या? तुमने तो मोहब्बत का अंजाम देखा है, ये बताओ दोबारा इश्क करना सही है क्या? बे इंतहा ना सही इश्क मैंने भी किया है, बे इंतहा ना सही इश्क मैंने भी किया था, इसका भरोसा दिलाना जरूरी है क्या? तुम जो रूठ जाते हो हर छोटी सी बात पर, हर बार तुम्हें मनाना जरूरी है क्या? सूरत नहीं सीरत पूछता है, ऐसी बातें कहना जरूरी है क्या? तुम्हारे बिन मैं एक पल नहीं जी सकता, हर एक से ये कहना जरूरी है क्या?

0: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी।
1: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577 4166710577 alldeadsolutions.ca।
0: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups, call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
2: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
3: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM।

0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940.
3: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? लुकिंग फॉर ओसैट ग्रांट? वंडरिंग इफ यू क्वालिफाई और नॉट? कई कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी के लिए कॉल अलका 416-505-2735. कॉलेजेस के एडमिशन से एप्लीकेशन प्रोसेस तक अलका विल हेल्प यू फॉर एब्सोल्युटली नो चार्ज, नो फीस. कॉल अलका 416-505-2735.
8: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा. लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
9: ताली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है.
10: कौन हो तुम?
9: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
10: इसे कहते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
11: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है. जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं. पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब सभी आंसू बहा रहे हैं. एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शाले और कपड़े उड़ाए जा रहे हैं. सबको पता है कि शॉले और कपड़े इसके काम के नहीं हैं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं. कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं. जिंदगी में एक कदम भी साथ ना चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पे उठाए जा रहे हैं. आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है. मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है.
12: It's P on the track. Let's go.

कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940 6478631940।
3: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। Clear Optical by Varun Kanda।
6: क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? लुकिंग फॉर OSAT ग्रांट? वंडरिंग इफ यू क्वालिफाई और नॉट? कई कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी के लिए कॉल अलका 416-505-2735। कॉलेजेस के एडमिशन से एप्लीकेशन प्रोसेस तक Alka will help you for absolutely no charge, no fees. Call Alka 416-505-2735. 416-505. Surprise practice.
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें, 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
7: Hyundai का Next Starts Now sales event चल रहा है Don Valley North Hyundai पर। अब secure करें साल के lowest rates। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31st तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट donvalleynorthhyundai.com या वुडबाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट, मार्कम पर।
8: डॉन वैली नॉर्थ हुंडई, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
9: Papa, ये कौन सा शो है पापा? पूरा GTSE के बारे में बात कर रहा है। सनी बेटा, ये South Asian Unlimited है।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which serve 30-plus locations. Se serve karte hai, 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
2: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
3: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
4: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों?
5: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
6: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. याद रखें, जब द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन. क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. यू कैन वॉक इन, मेक अपॉइंटमेंट्स एंड फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है. दवाई आपको शिप कर दी जाएगी. 647-760-2779 is the number for Kavya Homeo Care. Meeta ji, aapka swagat hai.
7: थैंक यू सनी जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो.
1: आज इस स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक पर करेंगे बातचीत?
7: थैंक यू सनी जी. सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन किड्स, अमंग किड्स, छोटे बच्चों में. तो यहाँ पे किड्स की बात करें तो खास करके पेरेंट्स को, घर वालों को ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपके चाइल्ड को कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर टाइम इसका पता नहीं चलता है कि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम. आमतौर पे बच्चा कह के हम सारा निग्लेक्ट कर देते हैं इस कंडीशन को. सो बच्चों में भी एडल्ट की तरह मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, बट जो छोटे किड्स हैं तो वो उसको डिफरेंटली एक्सप्रेस करते हैं. कि चाइल्ड को अगर डिप्रेशन है तो वो एडल्ट की तरह सैड रहना या यू नो रोना उसकी बजाय ज्यादा इरिटेबिलिटी बताएगा कि चिड़ रहा है, छोटी हर छोटी बात में वो चिड़ रहा है. सो चिल्ड्रन में जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं उसमें से कुछ एक हम आज देखते हैं, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर. कि जब ये बच्चा ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसके नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. तो उसमें क्या होगा कि हर छोटी बात में डरता रहता है, घर में अकेले नहीं रहना, कोई डार्क कमरा है तो वहां पे नहीं जाएगा, कोई एनिमल का डर है, तो ये सारी चीजों के साथ उसको एंग्जाइटी होने लगती है. अब एंग्जाइटी को आप नहीं पहचानते हो कि इसको ये इश्यू है, तो आगे जाके फिर क्या होगा कि रिपीटेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, तो ये कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कुछ पहले हादसा हुआ था तो वो उसके माइंड से अभी तक जा नहीं रहा है। सोशल फोबिया है, स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, या कई बार छोटे बच्चों में भी पैनिक अटैक्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ADHD, जिसमें क्या होगा कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, होता है ये बच्चा, डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाना एंड हाइपर एक्टिविटी, तो ये चीजें ADHD वाले बच्चों में देखने को मिलती है। और ऐसे बच्चों को फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर पे भी प्रॉब्लम, स्कूल में भी प्रॉब्लम, और कहीं भी जाएगा तो उसके साथ फोकस करना वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। टिक के एक जगह पे बैठ नहीं सकता, तो ऐसे में उसके माइलस्टोन्स भी डिले होते जाते हैं, जैसे स्पीच डिले पाया जाता है इन बच्चों में, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कई बार ऑटिज्म, जिसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और जिसका पता भी अर्ली चाइल्डहुड में, यूजुअली बिफोर द एज 3 पता चल जाता है, कि इसके सिम्टम्स या सीवियरिटी भी वेरी करते हैं, कि कुछ एक बच्चे होते हैं तो वो माइल्ड फॉर्म में होता है, इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो कुछ एक बच्चों में मॉडरेट टू सीवियर ये होता है। और ऐसे में ये बच्चे को कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में दूसरे लोगों से प्रॉब्लम आती है। सो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और फिर ईटिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, मोटे हो जाने के डर से, वेट बढ़ जाएगा वो डर से बच्चे खाना अवॉइड करते हैं, अगर कुछ खा भी लिया तो उसके बाद वॉमिट कर देते हैं, या फिर कई बार ऑपोजिट कंडीशन होती है कि पूरा दिन वो खाते रहते हैं, और ये जो है कई बार सीरियस हेल्थ कंसर्न बन जाता है, क्योंकि पूरा दिन खाने के साथ वेट के बारे में ये सोचते रहना या खाने के बारे में सोचते रहना, तो ऑब्वियसली ये उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि बायपोलर या डिप्रेशन, तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सट्रीम मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, मोर सीवियर देन नॉर्मल मूड स्विंग्स, के जिस करके उसको सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, जिसमें रियलिटी में रहने की बजाय वो अपनी ही दुनिया में रहता है, और जो कंडीशन रियल में है ही नहीं वो सोच सोच के डरता रहता है, सफर करता है, और टीनेज से लेके 20s में ये कंडीशन कॉमन है। और इस तरह के डिसऑर्डर के साथ मूड स्विंग से लेके कोई भी चीज का डर या पैनिक अटैक्स हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर उसका हो जाना, या फिर दूसरों को हर्ट करना, सेल्फ हार्म, या फिर आप कह लें कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वेट लॉस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, स्पीच प्रॉब्लम्स, सो ये वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो है पाए जाते हैं। अब ऐसे में जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उतना जल्दी उसका बेनिफिट मिलेगा। सो इस तरह के कोई भी कंसर्न के लिए वी डू हैव ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी, एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आप जो है मिल सकते हैं अगर प्रॉपर एज में स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो ऑल ओवर कैनेडा अमेरिका में मेडिकेशन जो है हम मेल करते हैं, शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसका कवरेज भी प्रोवाइड करती है, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अपनी प्रिस्क्रिप्शन रीफिल करवानी हो, या जैसे कोल्ड फ्लू, एक्यूट कोई कंप्लेन हो गई, स्टमक फ्लू हो गया, छोटे बच्चों में टीडिंग वगैरह की मेडिकेशन, 1 week 2 weeks की मेडिसिन भी आके आप जरूर ले सकते हैं। एंड लोकेशन है हमारी एयरपोर्ट कॉटरेल की कॉर्नर पे, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड पे, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। मंडे टू सैटरडे रेगुलर आवर्स है क्लिनिक के, सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक।
1: बिल्कुल दोस्तों, बता दें काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। इसका मेजर इंटरसेक्शन नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड है। क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 days a week, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग to 6 PM। वॉक इन भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं, एंड खासकर जो हमारे लिसनर्स काफी दूर रहते हैं, आप फोन पर कंसल्टेशन करें, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। 6477602779, 6477602779। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया,
7: थैंक यू सो मच।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
4: क्या आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं? लुकिंग फॉर ओसैट ग्रांट? वंडरिंग इफ यू क्वालिफाई और नॉट? कई कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी के लिए कॉल अलका 416-505-2735। कॉलेजेस के एडमिशन से एप्लीकेशन प्रोसेस तक अलका विल हेल्प यू फॉर एब्सोल्युटली नो चार्ज, नो फीस। कॉल अलका 416-505-2735।
5: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
6: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और

0: विजिट bramptonappliances.ca.
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, Clear Optical by Varun Kanda.
4: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।

0: जोशी।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
2: ताली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है।
3: कौन हो तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: इसे कहते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
2: गुड आफ्टरनून रेडियो टोरंटो कनाडा के इस ड्राइव टाइम शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं शिवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। और खूबसूरत से गानों के साथ, फ्राइडे की चहल पहल के साथ, आपसे बातचीत के साथ। और आप नंबर डायल करते रहिए 416-303-3639। अपने गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, कोई भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ये नंबर शो के दौरान और शो के बाद भी हमारे साथ रहने वाला है। और आप रहने वाले हैं 3 बजे तक हमारे साथ। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत।
5: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सर श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस फाइन आफ्टरनून।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा 2:04 का वक्त है और दोस्तों वीकेंड आ रहा है और समर का टाइम है। समर के तो हर एक दिन ही वीकेंड जैसे ही होते हैं, लंबी लंबी सी शामें होती हैं। जो काम हम विंटर्स के टाइम में रिजर्व में रख देते हैं, सोचते हैं समर के टाइम में पूरा कराएंगे, उनमें से एक काम होता है अपने बेसमेंट को एक नया लुक देना, बेसमेंट को लीगल करना अगर लीगल नहीं है तो, क्योंकि लीगल बेसमेंट नहीं होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। लेकिन हमारे जब एक्सपर्ट जो हमारे साथ होते हैं वो आपके साथ हैं तो प्रॉब्लम कैसे। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ओंटेरियो में लीगल हाउसेस को कई यूनिट्स में बदलना, जिसको हम मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स कहते हैं, एक शानदार रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। विवेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो 2012 से ओंटेरियो में कानूनी तौर पर बेसमेंट अपार्टमेंट और मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स में स्पेशलिस्ट हैं। ना सिर्फ जरूरी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग परमिट डिजाइनिंग का काम भी खुद ही करते हैं। शानदार इसमें चीजें शामिल हैं प्रोडक्ट, जिसमें स्विमिंग पूल बनाना, डेक बनाना, गराज और घर का एक्सपेंशन भी शामिल है। यू हर्ड मी राइट, विवेक गुप्ता जी इज जॉइनिंग अस नाउ ऑन रेडियो टोरंटो कनाडा 6479731733। विवेक जी जब बोलते हैं तो आप ये डायल नंबर जरूर करते हैं 6479731733। विवेक जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल लिस्टनर्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ उक्कुल से, 6479731733 आपका बिल्डिंग कोड स्पेशलिस्ट। जी शिवानी जी
0: जी, तो हम जो कल आपसे बात कर रहे थे तो उसको हम ही थोड़ा सा एक बार टच बेस करना चाहूँगी। इससे पहले मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ कि किसी को कैसे पता चलेगा, लाइक आप तो स्पेशलिस्ट हैं आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन एक रेगुलर लोग जो घर में अपने नॉर्मल लोग रहते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि फायर रेटिंग, अगर जो बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है घर का, वो सही है कि नहीं है?
1: दो तरीके हैं, एक तो आप मुझे भी बुला सकते हैं और या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को जो कि लीगल बेसमेंट बनाने में और फायर रेटिंग करने में एक्सपीरियंस हो, नहीं बुला सकते हैं। हम लोगों को एक्सपीरियंस है ड्राईवॉल को चेक करने का और ड्राईवॉल के पीछे सेफ एंड साउंड भरा है या नहीं भरा है, जो कि दो बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज होती है रेजिलियंट चैनल्स जो कि स्टड्स और ड्राईवॉल के बीच में लगाए जाते हैं, तो वो चीज हम चेक करते हैं और उसे हम बताते हैं कि आपका आपकी वॉल फायर रेटेड है या नहीं।
0: जी जी ठीक है जी, ये तो बात हो गई फायर रेटिंग की। अब बात करेंगे बेसमेंट लीगल होने की। जब लीगल बेसमेंट नहीं होता है तो जब तक काम चल रहा होता है तो लगता है कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम लाइटली ले लेते हैं। लेकिन एक बार जब इंस्पेक्शन आ गया और पता चल गया कि हमारा बेसमेंट लीगल नहीं है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल तौर पर डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है वर्स्ट केस में। तो फाइन के तौर पर तो आजकल के मुश्किल हालात हैं फाइनेंशियली, जरूर पूछना चाहूंगी कि अप टू हाउ मच लाइक फाइन लग सकता है अगर पकड़ा गया कि आपका बेसमेंट लीगल नहीं है तो?
1: $25,000 से फाइन शुरू होता है और $1,000 तक जाता है, और इन केस ऑफ वेरी वर्स इंसिडेंट इम्प्रिजनमेंट भी है जो कि होम ओनर्स को होता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरीके का कोई बिल्डिंग कोड वायोलेशन हो। होता यह है कि जब हम बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और हम प्राइस उसका इवैल्यूएशन उसकी कॉस्टिंग करते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि अगर हम बिल्डिंग परमिट के साथ करेंगे तो महंगा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शुरू से ही कॉस्ट एस्टिमेटिंग सही करा जाए तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही होते हैं लीगल बेसमेंट बनाने के। उसका तरीका यह है कि पहले बहुत ही सावधानी से केयरफुल्ली हमें असेसमेंट करना होता है, कहाँ फायर रेटिंग होनी है, कहाँ फायर एग्जिट्स बननी है, कौन सी ईग्रेस विंडो बड़ी होनी है और किस तरीके से एग्जिट्स डिजाइंस होनी है, स्प्रिंकलर कहाँ कहाँ लगने हैं और स्मोक अलार्म्स कहाँ कहाँ लगने हैं। अगर सारा काम पहले ही केयरफुल्ली डिजाइन किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ही, जैसे कि नॉन लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनता है उसमें लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बन सकता है।
0: क्या बात
1: है, यह है कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स अपने काम को कम करने के लिए और प्रॉफिट को ज्यादा बनाने के लिए इस तरीके की कोटेशन देते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है वो प्राइस में बहुत डिफरेंस है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि जब भी आप लीगल बेसमेंट बना लेते हैं और उसमें परमिट नहीं लेते हैं तो उसके बाद में फाइन्स की इम्प्लीकेशन तो हो ही सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में इस तरीके से हो रहा है कि सिटी ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप अपने इलीगल बेसमेंट को लीगल कराओ, इस तरीके के ऑर्डर्स में जब हमें लीगल बेसमेंट कराना पड़ता है, उसी को कन्वर्ट कराना पड़ता है, तो फिर हमें काफ़ी सारी रेनोवेशंस करनी पड़ती हैं जहाँ जहाँ फायर रेटिंग नहीं है, और जो भी हमारे 42 पॉइंट्स हैं जो लीगल बेसमेंट होने चाहिए वो सारे हमें मीट आउट करने होते हैं, कोर्ट से कंप्लाई करने होते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा फाइन भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, सिटी की परमिट की फीस भी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक लीगल चीज़ को इलीगल चीज़ को लीगल बना रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा टाइम लगता है, किराए में भी उस वक्त उस दौरान नुकसान होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले से ही लीगल बेसमेंट बनाया जाए।
0: जी, सो एवरीथिंग, होम कंस्ट्रक्शन, होम एक्सटेंशन, होम का एक्सटेंशन, डेक, गराज, स्विमिंग पूल से लेकर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तक, और साथ में फ्री इवेल्युएशन भी आपको करके देंगे। तो इंतज़ार किस बात का है, अपने प्रोजेक्ट को सेफ बनाइए, सुरक्षित बनाइए, और कॉल घुमाइए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर यही है 6479731733, 6479731733। विवेक जी, प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
1: थैंक यू।
0: वीडियो टोरंटो कनाडा, और अब बात हो गई है उस डिजिटल कोर्स की जो 29 अगस्त को शुरू हो रहा है
2: जी।
0: हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनका वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा स्प्रेड हो रहा है कि लोग आपको लगातार कॉल कर रहे हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि पर्सनल अटेंशन देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं आमिर जी। तो आमिर, बताइए कि कब से शुरू हो रहा है ये कोर्स, और क्या इसके कॉम्पोनेंट्स होंगे, कितनी देर का ये कोर्स होगा?
2: शिवानी, मैं आपको बता दूं कि ये 40 घंटे में हम आपको पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया का प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों सिखा देंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई काम सीखा जाता है, स्किल है, हुनर है, और इसमें खास बात यह है कि ये लाइफ लॉन्ग है, सारी जिंदगी ये हुनर, ये स्किल आपके साथ, आपके पास रहेगा। किसी भी सूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, यू विल बी एबल टू वर्क इन डिजिटल एंड कन्वेंशनल मीडिया। मैं कंटेंट्स के बारे में कुछ बता दूं कि लोग 50,000, 60,000, 70,000 और इससे भी ज्यादा पैसा साल का मार्केटिंग पे लगा देते हैं। अगर ये काम खुद सीख लें तो अपनी मर्जी का काम कर सकेंगे, अपने हिसाब से काम कर सकेंगे, अपनी टाइम मैनेजमेंट खुद कर सकेंगे, और $50,000 भी साल का बचा लेंगे। एक साल का डिप्लोमा रेडियो का ब्रिटिश कोलंबिया में एक कॉलेज करवा रहा है और उसकी फीस $22,000 साल की है।
0: और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स,
2: उनकी फीस है जी $41,000, $41,000 ईयर, और सिर्फ वो एक रेडियो का थ्योरेटिकल डिप्लोमा है। हम आपको ऑडियो प्रोडक्शन सिखाते हैं 40 घंटे में, हम आपको वीडियो प्रोडक्शन सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं, अगर आप अच्छे एडिटर हैं तो मार्केट में स्टार्ट में $60-70 से $100 तक आप शुरू करेंगे जॉब, और ये $1,500-2,000 पर आवर की जॉब जाती है एडिटर की, अच्छे एडिटर इतना पैसा चार्ज करते हैं।
0: क्या बात,
2: इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल। मैं कहता हूं 40 घंटे में अगर आप 20 घंटे का कॉन्टेंट भी आपको समझ आ गया तो आप लाखों डॉलर के आदमी हैं। यहां नंबर बता रहे हैं, नंबर लीजिए, डायल कीजिए, आप रिटायर्ड हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, आप यंगस्टर हैं, बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और आपको एक्सपर्ट लेवल तक डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन और मार्केटिंग सिखा देते हैं। ये रहा नंबर 4163033639। नंबर आपको दोबारा दे रहे हैं, ये नंबर मिलाइए, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाइए, 4163033639। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन पूरे कनाडा में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफर कर रही है, और वो है रेडियो टोरंटो कनाडा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
3: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई, और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
6: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
7: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 months एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
14: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 6479977224 6479977224।
15: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
16: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
15: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
17: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639. It's 416-303-3639.
18: She likes to drop it low, man.

0: और साहब बात करते हैं आपको मिलने वाली ग्रांट के हवाले से। ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी तवज्जो चाहिए होगी आज। उसकी वजह यह है कि ग्रांट जो गवर्नमेंट दे रही है ऐसे ही खाली पीली मुफ्त में नहीं दे रही है, ढेर सारा टैक्स देते हैं। आप साल में लाख कमाएं तो 25,000 गवर्नमेंट का कम से कम बन जाता है, तो फिर अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो आप क्यों छोड़ें भाई, सवाल ये है। और बहुत से सवाल हैं जहन में, उनका जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको।
1: थैंक यू जी, सभी को सलाम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल। गवर्नमेंट ने टैक्स लेना हो तो वो तो कब्र की दीवारों तक भी पहुंच जाते हैं और टैक्स निकाल के ले आते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे तो कितनी जल्दी ले लेनी चाहिए और क्यों ले लेनी चाहिए?
1: देखिए, टाइम रह गया है कम, सिर्फ कल तक का टाइम रह गया है, शनिवार तक का। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट बंद कर रही है। ये पीछे ना रहे, 30,000 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें। आपके सारे यार दोस्त ले चुके हैं फंडिंग को, बता नहीं रहे आपको, छुपन छुपाई खेल रहे हैं आपसे। वो अच्छी चीजें कोई नहीं बताता, गंदी सब बताते हैं। तो ग्रांट लें, मिस ना करें, कॉल करें, ऑफिस आए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, ग्रांट्स बंद कर रही है।

0: सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
1: नागपाल जी जुड़े हैं एक बार फिर से, इनसे रब्ता मुनकता हुआ थोड़ी देर के लिए। हम जानना चाह रहे थे कि कितना टाइम बाकी है और कैसे अप्लाई किया जाए ग्रांट के। जी नागपाल,
2: सिर्फ कल का देना है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद जो नए बैच स्टार्ट होंगे उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स बंद कर रही है। तालीम हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग खर्चे पानी के लिए, ट्रैक अपने अकाउंट में हुकूमत से हासिल करें। बैंक इतने मेहरबान नहीं है, बैंक तो लूटने को बैठे हैं। सीधी बात है, अगर आपकी घर की किस्त 2500 है, उसमें से लाइक मान के चले 1500 तो ब्याज जाता है पहले 10-15 साल, उसके बाद प्रिंसिपल पैसा अच्छा जाना शुरू होता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग 30,000 से 100,000 की दे रही है, उसमें से आधा हिस्सा, हाफ पोर्शन तो ग्रांट्स है, जो रेस्ट पोर्शन है वो 0% पे लोन है और 1.5 साल बाद लौटाना में स्टार्ट करना होता है। आसान सी किस्तों में 15 साल में सिर्फ 2.5% साल का ब्याज होता है। तो कोई कुंडी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। कॉल करें, ऑफिस आए, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें। कोई इसमें मीठी बातें, कोई हाइड एंड सीक नहीं है इसके अंदर। ईमानदारी से 8 साल से काम कर रहे हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं।
1: मैं ये जानना चाहता हूँ नागपाल, कि बहुत से बुजुर्ग हैं, घरों में बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, उम्र 60 साल है, 70-75-75 साल हो गई है, और वो भी चाहते हैं कुछ करें जिंदगी में। अब भी वो इच्छाएं, वो ख्वाहिशें, वो तमन्नाएं बाकी हैं उनके दिलों में। तो क्या वो ये कोर्स करके ग्रांट और फंड्स दोनों ले सकते हैं?
2: हाँ जी, आप मान के चले हमारे 30% क्लाइंट्स तो सीनियर सिटीजन ही हैं, घर के कंफर्ट से फुली ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं और फुली ऑनलाइन कोर्सेज है। कहीं नहीं जाना आपने, घर पे फोन पे या फिर लैपटॉप पे क्लास लगानी है 2 से 3 घंटे। एग्जामिनेशन है नहीं, बेसिक इंग्लिश बस आपको आनी चाहिए। नो एज लिमिट, पेंशन पे एलिजिबल है, नो क्रेडिट चेक। फंडिंग आपके खाते में है, हमारे खाते में नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट $1.1 बिलियन सिर्फ रिफ्यूजीज के होटल बिल्स पर लगा देती है, तब तो आपको क्या फायदा रिफ्यूजी होते का आश्रम। आप गवर्नमेंट आप पे लगा रही है, पीछे लगा रही, फंडिंग लें और कॉल करें, ऑफिस आए।
1: मैं एक सवाल और सिनेरियो आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों की उम्रें, एक की 65 साल है, एक की 70 साल है, और वो बोर होते रहते हैं घरों में या कहीं कम्युनिटी सेंटर में जाके बाबा जी ताश खेलते रहते हैं। तो क्या अगर दोनों मियां बीवी ये कोर्स करें तो ग्रांट कितने तक मिल सकती है उनको?
2: हाँ जी, फैमिली ऑफ टू में हस्बैंड वाइफ है, चाहे ओल्ड है, एज डजंट मैटर, गवर्नमेंट का प्रोग्राम एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। फैमिली ऑफ टू में एक ही को पढ़ने का फायदा है, आसान से कोर्स करने का, जिसमें एग्जामिनेशन नहीं है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। ओके, इनमें 45,000 की फंडिंग बनती है, उसमें से हाफ पोर्शन $25,000 तो ग्रांट ही है, ग्रांट जो कि बंद होने वाली है अगले हफ्ते से, और रेस्ट पोर्शन 0% पे लोन है। ऑन अदर हैंड अगर फैमिली ऑफ फाइव, आपके 3 बच्चे, तो फंडिंग 100,000 भी चली जाती है, जिसका हाफ पोर्शन $50,000 तो ग्रांट है, ग्रांट नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री पैसा सीधे आपके खाते में उठा करके, और जो रेस्ट पोर्शन है वो 0% पे ऑप्शनल लोन है। अपना नुकसान ना कराओ, फंडिंग लो, तालीम भी हासिल करो, फंडिंग भी हासिल करो। कितने क्लाइंट्स कर चुके हैं 8 साल में हमारे साथ।
1: बिल्कुल ठीक, यहाँ मैं नागपाल जी के बारे में बता दूं कि ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है, कोई डाउट में ना पड़े, किसी शक और शुबे में पड़ने की जरूरत नहीं है। इट्स रियल, इट्स जेन्युइन। और जब आपका काम हो जाएगा, ग्रांट आपको मिल जाएगी, $60,000-70,000 ग्रांट और लोन मिला के, तब जाके कहीं आपसे $200 या $499 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रांट आपसे चार्ज किया जाएगा। ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ओरिजिनल पर्सन, कॉन्टेक्ट हिम, डायल दिस नंबर, गेट द ग्रांट, गेट द लोन। 437-264-3175 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 437-264-3175, 437-264-3175. नागपाल आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा बात होगी. थैंक यू वेरी मच.
3: रेडियो टोरंटो कनाडा और वक्त हो चला है 2:27 और अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके बच्चों के काम आ सकता है और आपके भी काम आ सकता है क्योंकि आप ये सुनेंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे. हम बात कर रहे हैं अनिल कुमार जी की, जाना पहचाना नाम है, हमारे शो में अक्सर आते हैं और मैथमेटिशियन है, जीनियस है मैथ्स में. अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है मैथ में या फिर आप एम कर रहे हैं हायर ग्रेड्स, स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस और सक्सेस स्टेम प्रोग्राम्स में, अनिल कुमार खंडेलवाल मैथमेटिशियन हैं, एजुकेटर हैं, 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 12 तक के स्टूडेंट्स की. उनकी पर्सनलाइज वन ऑन वन ऑनलाइन क्लासेस हैं, हर एक बच्चे को अलग से बच्चे को समझ के उसको पढ़ाते हैं. यही वजह है कि हर एक बच्चा उनका एक ब्राइट स्टूडेंट की तरह उनकी क्लासेस से निकलता है और स्कॉलरशिप के साथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता है. और सपोर्ट अवेलेबल है ओंटारियो करिकुलम के लिए, आईबी प्रोग्राम्स के लिए, एपी प्रोग्राम्स के लिए और ओलंपियाड्स के लिए और साथ में एडवांस फंक्शंस के लिए, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करते हैं. यूनिक अप्रोच है उनकी और उसके लिए हमेशा जाने जाते हैं अनिल कुमार जी. 6 से ज़्यादा उनकी किताबें अमेजोन पे हैं, 18,000 से ज़्यादा उनके यूट्यूब वीडियोज़ हैं, 4,00,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं. उनकी गाइडेंस कैन मेक ह्यूज डिफरेंस. कॉल कीजिए 6479792791 और हाँ, रेडियो टोरंटो कनाडा का रेफरेंस दीजिए. बहुत ही ल्यूक्रेटिव सा डिस्काउंट आपका इंतजार कर रहा है. 6479792791. दिस इज रेडियो टोरंटो कनाडा.
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए. टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 months एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन. हाइब्रिड अवेलेबल. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111.
9: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है.
10: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
9: उसे डॉक्टर बनाएं. 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
10: 90% पास रेट.
9: कॉल नाउ 416-743-9222,
10: 416-743-9222
9: और विजिट allsaintsuniversity.org. All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा.
11: क्या आप सुन रहे हैं?
12: क्या आप सुन रहे हैं?
10: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
12: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
10: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
13: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, जहाँ पे सपने सच में सच होते हैं। और आमिर, हम तो साक्षी हैं, विटनेस है, गवाह है इस बात के कि जब इतने हैप्पी फेसेस दिखाई देने को मिलते हैं और सब लोग मिठाइयाँ लेके आते हैं, ये बात अलग है कि ओम जी के वजन पे एक इंच भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब रूहानी कॉलेज में बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते और इतने अच्छे अच्छे से फ्लरिशिंग करियर्स की तरफ बच्चे जाते हैं। वो होते हैं जब अंदर से खुशी होती है ना आमिर, और सेटिस्फेक्शन होता है और ऐसा लगता है कि अपना मनपसंद करियर हमें मिल गया, और वो भी इतने टाइम सेव करके।
1: बिल्कुल,
0: तो बस खुशी तो होनी ही है। और इसके लिए आपको बता दें कि रूहानी कॉलेज का नंबर आमिर अपने लिस्टनर्स को बता।
1: बिल्कुल, ये नंबर मिलाएंगे आप बच्चे को डॉक्टर बनाना है, यही नंबर मिलाना है 905-731-2555।
0: जी, और ओम जी, आप अगर वेट लॉस का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो मुझे एनरोल कर लीजिए इसमें प्लीज। वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू शिवानी, मैं आपकी बातें सुन रहा था। तो एक्चुअली सही में जो आपने बोला ना कि जो वेट लॉस का जो डिप्लोमा तो नहीं हमारे पास में सचेज की वेट लॉस का, बट जब वो आरएमटी जब मसाज थेरेपी का कोर्स करते हैं उसके बाद जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप बिल्कुल सेफ में हो जाते हो, बिल्कुल वेट लॉस अपने आप ही हो जाता है, पैसे भी मिलते हैं।
0: तो जी, उसी से शुरुआत करते हैं ओम जी। जो मसाज थेरेपिस्ट का डिप्लोमा है, इसकी एक तो क्वालिफिकेशन बता दीजिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी देर का ये कोर्स होता है, और थोड़े हमारे लिसनर्स ये भी जानना चाहते हैं स्पेशली आजकल के टाइम में अगर अच्छी सैलरी अच्छा पे स्केल हो तो उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें जानकारी दे दीजिए।
2: जी बिल्कुल, देखो इसमें जैसे हमारा एक नया क्लिनिक खुला है मिसिसागा में, तो मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई है। जो हम लोग जैसे 8-9 सालों से पे कर रहे हैं आरएमटी को, जो नए क्लिनिक खोल रहे हैं जहाँ पर हम पे कर रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं, तो
0: जी
2: कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जैसे 130-135 तक पे करती है, डीप टिश्यू मसाज है तो उसका हम लोग 135 पे करते हैं, उसका 70% मतलब वो क्लेम करते हैं, तो 70% उनको जाता है जो आरएमटी हम हायर करते हैं, 30% क्लिनिक करता है, ये मोस्टली मार्केट में ही चलता है। तो आप 70% देखें तो $94 135 का भी अगर हम बिल्कुल कैलकुलेट करके बता रहा हूँ 94.5 ये हम लोग आरएमटी को पर आवर पे करते हैं। और कोई भी आरएमटी दिन भर में अगर करना चाहे तो 7-8 आराम से कर सकता है, बल्कि ज्यादा भी करते हैं। आप खुद ही देख लो कि कितना $700-800 पर डे का बनता है,
0: वाओ, अमेजिंग
2: कितना बन जाता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये तो थी आरएमटी की बात, रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट। और आमिर, आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स को एक बार नंबर जरूर बताएंगे जिससे कि हमारे लिसनर्स इस पे।
1: जी बिल्कुल, अगर आप रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो कोई लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए और छोटा मोटा आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। और मसाज थेरेपिस्ट अगर आप बन गए तो कम अज कम महीने का $15,000-18,000 कमा सकते हैं राइट वे, यानी इधर आपने डिप्लोमा खत्म किया उधर काम मिल जाता है। ये रहा नंबर 905-731-2555। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, यही मिलाइएगा, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल करियर। 905-731-2555
0: जी, और इसके साथ हम अब बात करेंगे डॉक्टर बनने का, और हर किसी का सपना, जिसका भी डॉक्टर बनने का सपना होता है, वो सपना माँ बाप का के साथ साथ बच्चों का भी होता है, यानी पूरी फैमिली का ये सपना होता है कि वो जो बच्चा जब डॉक्टर बनेगा उस दिन का इंतज़ार एक एक दिन गिन के करते हैं पेरेंट्स भी, और वो बच्चा तो खुद भी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में इंतज़ार अगर लंबा हो तो ज़रा मुश्किल होता है, और आपने इस चीज़ को भी आसान कर दिया है, बड़ी जल्दी आप उनके सपने पूरे करते हैं, डॉक्टर बन सकता है वो। तो ज़रा बताइए कि कितना आसानी से ये करियर चूज किया जा सकता है आपके द्वारा।
2: जी जी बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी बात की टाइम और पैसा की बात होती है कोई भी चीज करने जाते हैं हम तो इसमें देखिए आफ्टर 12th ग्रेड जस्ट 1 ईयर हमारे पास करना होता है, उसके बाद आप सिमिलर क्लास में जाते हो जहाँ पे आप बैचलर डिग्री करते हैं 4 साल, फिर एमकैट में 1-2 साल लगाते हैं, फिर इंटरव्यू में, तो फिर भी उसके बाद में भी आपको ये गारंटी नहीं होती कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बट हमारे पास क्या है कि जैसे आपने कोर्स किया वो आप गारंटी का एडमिशन होगा ही होगा मेडिकल कॉलेज में, और आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। तो वो 4 साल की जर्नी है कि बहुत मायने रखती है, वो कम हो जाती है, और फी भी आप देखेंगे तो हम इतना हेल्प करते हैं कि कॉलेज से बात करके नेगोशिएट करके बहुत ही मतलब रिजनेबली कोई भी जो चाहे करना वो कर सकता है।
0: जी
1: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर दे रहे हैं एक बार फिर से, डॉक्टर बनना चाहते हैं या मसाज थेरेपिस्ट, नंबर यही मिलाएंगे 905-7315-705-731-2555। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी आपके टाइम के लिए।
0: थैंक यू सो मच ओम जी, प्लेजर हैविंग यू विद अस। टोरंटो कनाडा, और एक बार फिर से रीकैप कर देते हैं आमिर, जो डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स 29th August से शुरू हो रहा है, 4 हफ्ते का कोर्स है, 1 बजे से 6 बजे तक, यानी 5 घंटे सैटरडे 5 घंटे संडे, टोटल 40 घंटे का ही कोर्स है।
1: बिल्कुल,
0: और उसमें जो दूसरी यूनिवर्सिटी साल भर में जो पढ़ाती हैं उससे ज्यादा 1 साल में आपको पढ़ाया जाएगा, ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाएगी। आपके पास हर एक स्टूडेंट के पास अपना पीसी होगा, अपना कंप्यूटर होगा, जिसपे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स लोडेड होंगे, जो मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे आपको पढ़ाया जाएगा, A to Z आप पढ़ सकते हैं, एक नॉमिनल सी फीस में आप एक एडवांस्ड जो स्किल है वो हासिल कर सकते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। Am I right, Amar?
1: बिल्कुल सही कहा। कल मुझे बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े नामवर फर्द का फोन आया, उन्होंने कहा कि यार मैं डिजिटल मीडिया करना चाहता हूँ, मैं लोगों को रखता हूँ, वो महीना 2 महीना काम करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर महीना 2 महीना काम करते हैं फिर चले जाते हैं, मैं चाहता हूँ मैं ये काम खुद ही सीख लूँ ताकि मुझे ना तो किसी को रखने की जरूरत पड़े और ना ही मुझे कोई छोड़ के जाए, जब भी मेरे पास टाइम हो मैं अपने हिसाब से डिजिटल मीडिया पे अपना कॉन्टेंट प्रमोट कर सकूँ। तो इसी तरह से आप रियल स्टेट में हैं, आप मोर्टगेज में हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, टिकटॉकर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे सेंसेशन चाहते हैं, फॉलोइंग चाहते हैं, तो हम आपको ना सिर्फ प्रोडक्शन सिखाएंगे कि कंटेंट प्रोड्यूस कैसे करना है, बल्कि ये भी बताएंगे कि फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, हाउ टू बी प्रोमिनेंट ऑन डिजिटल मीडिया। उसके लिए नंबर मिलाएं, 40 घंटे में प्रैक्टिकल स्किल सीखें, 416

0: और साहब बात करते हैं आपके साथ होने वाले हादसात की। रोड पे गाड़ी टकरा जाए तो हवास बागता सा हो जाता है इंसान, होश से खो देता है अपने। ऐसे में बैरिस्टर हो, सॉलिसिटर हो, दलेर हो, तजुर्बाकार हो, स्किलफुल हो और मोर देन फुल टाइम पर्सनल इंजरी ही कर सकता हो और आपकी बात जुबान समझ सकता हो, तो नाम एक ही दिमाग में आता है साहब, सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिस्नर से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं।
0: थैंक यू
1: जी। तो फैल भाई, जैसा आप अपने प्रोग्राम में जो है हाईलाइट करते हैं, सैयद लॉ ऑफिस एक पर्सनल इंजरी एक्सक्लूसिव लॉ फर्म है जिसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है, एरोप्लेन इंजरी है, यानी जहाँ भी इंजरी हैगी और किसी थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, यू रिटेन सैयद लॉ ऑफिस और सैयद लॉ ऑफिस इस बात को मेक श्योर करेगा कि आपको आपकी इंजरीज का मैक्सिमम कंपेंसेशन दिलवाया जाए।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 13 इयर्स और वी हैव गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू पीपल इन यू नो आवर डिफरेंट कार एक्सीडेंट्स। ज्यादातर हम कैटास्ट्रॉफिक इंजरीज में डील करते हैंगे, मीन्स टू से दैट वेरी वेरी सीरियस इंजरीज यहाँ पर जो है वो बेसिकली लाइफ ऑल्टरिंग जिसको हम इंजरीज कह देते हैं वो है
0: जी।
1: तो लेकिन अदरवाइज जो है वो जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है वो भी बहुत सी दफ़ा कैटास्ट्रॉफिक बन जाती हैं। उसका रीज़न ये होता हैगा कि आपको जो है वो जो आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं क्योंकि पेन आपके कॉन्स्टेंट रहता है और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल आपके सिम्टम्स होती हैंगी वो दे मेक अफेक्ट ऑन योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। उससे भी जो है वो आपको यू आर एलिजिबल फॉर यू नो व्हाट ह्यूज कंपेंसेशन अमाउंट। लेकिन इसके लिए करना क्या हैगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो आपका क्लेम अगर यू वांट, इफ यू वांट दैट दे प्रोसीड योर क्लेम्स, ऑल योर क्लेम्स प्रोसीड इन अ टाइमली वे, इन अ प्रोफेशनल मैनर, आपको जो है वो लॉ फर्म रिटेन करनी है क्योंकि बेसिकली जो है वो 7 डेज के अंदर अंदर आपने इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइस करना होता है कि जी आपका एक्सीडेंट हुआ है और 30 डेज में आपको जो है सारा पेपर वर्क मुकम्मल करके भेजना होता है। अगर
0: बिल्कुल ठीक,
1: उसके साथ साथ जो मेडिकल एविडेंस चाहिए होती है उसकी गैदरिंग का प्रोसेस और जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है कॉज ऑफ द एक्सीडेंट उसका प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है ताकि आपकी आने वाले क्लेम्स को उसमें जो पर्टिकुलरली जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लेम हैगा वो आपका क्लेम हैगा अगेंस्ट एट फॉल्ट ड्राइवर उसको सिक्योर किया जा सके। सिक्योर करने का मतलब ये है कि उसके लिए वो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट की जा सकें

0: जो कि जरूरी हैगा आपके क्लेम को जो है वो एलिजिबल बनाने के लिए, कि उसका सेटलमेंट जो है वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से उसका सेटलमेंट हो। जो कंपोनेंट होते हैंगे, जो एक्सीडेंट बेनिफिट्स आपको अलाउ होंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कंपनी $65,000 देती है ट्रीटमेंट के लिए, और यही कैटास्ट्रोफिक इंजरी के केस में $1 million को पहुंच जाता है एंड फॉर लाइफ। तो अब आप देख लेंगे कितना बड़ा डिफरेंस हैगा, एक तरफ जो है वो 65,000 हैगा और एक तरफ जो है $1 million हैगा। इसी के साथ ये तो मैं एक्सीडेंट बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका क्लेम स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो अगेंस्ट एट फॉल्ट ड्राइवर क्लेम है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो लेकिन बहरहाल इसको करना कैसे आएगा, ये काम सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉ फर्म के थ्रू, सैयद लॉ ऑफिस के थ्रू हो सकता हैगा, जो कि लास्ट 13 ईयर्स से कम्युनिटी को सर्व कर रही है। और इसके अलावा जो मैं आजकल आपके प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ कि आफ्टर 1st July द इंश्योरेंस लॉ हैज चेंज्ड, सम ऑफ द बेनिफिट दैट यूज्ड टू बी द स्टैंडर्ड बेनिफिट्स दे हैव नाउ बिकम ऑप्शनल। यानी ऑप्शनल का मतलब ये, आप बाय करेंगे तो आपको इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू विल गेट द बेनिफिट।
1: बिल्कुल ठीक।
0: इम्पोर्टेंट जो है पर्टिकुलर वर्किंग क्लास के लिए इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट हैगा, जो कि अभी ऑप्शनल हो गया है, और जो भी पॉलिसी रिन्यू होंगी 1st July के बाद, उसमें आप लोग वो ऑप्शनल बेनिफिट जरूर बाय करें। उसका जो भी प्रीमियम एक्स्ट्रा हैगा 10, 15, 20 डिपेंडिंग किस क्वांटम के आप बाय कर रहे हैंगे, यू पे दैट। क्योंकि अदरवाइज आपके पास, अगर फर्ज किया आपके पास कोई डिसेबिलिटी प्लान नहीं हैगा और आपके पास जो है कोई इनकम कंटिन्यूएशन नहीं हैगा, देन देयर विल बी रियली बिग प्रॉब्लम एंड यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इफ यू कैन नॉट वर्क।
1: बिल्कुल ठीक।
0: बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो आपके डेथ और फ्यूनरल बेनिफिट है, जो भी ऑप्शनल हो गए हैंगे। यानी अगर आपके एक्सीडेंट में आपकी डेथ होती है, कार एक्सीडेंट में, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 6,000 फ्यूनरल बेनिफिट, और इमीडिएट डिपेंडेंट को यानी स्पाउस को $25,000 देती है, और जो अदर डिपेंडेंट्स हैं बच्चे उनको $10,000 इच फॉर द लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ देयर इंश्योर्ड। ये बेनिफिट भी आप लोग जरूर बाय करें। इसका मतलब ये है कि अभी आपका प्रीमियम कम हो जाएगा अगर आप ये ऑप्शनल बेनिफिट बाय नहीं करेंगे, लेकिन आप ऑप्शनल बेनिफिट जरूर आप बाय करें, क्योंकि रिस्क कवर के साथ ही जीना जो है वो कनाडा में जो है आपको ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता हैगा। इन केस आपके जो भी फाइनेंशियल रिस्क हो आप उनको कवर करके चले, ताकि आपकी जो सेविंग वगैरह हैगी, यहाँ पे सेविंग तो होती नहीं हैगी, लेकिन बहरहाल जो भी आपकी फर्दर सोर्स ऑफ आपका मनी हो सकता हैगा, उस पर कोई ऐसा जो है वो बर्डन ना आए।
1: तो
0: ये बातें जो है सैयद लॉ ऑफिस आपसे शेयर करता रहेगा। सैयद लॉ ऑफिस कम्युनिटी की एक जो है इंतहाई प्रोमिनेंट लॉ फर्म हैगा। वी वांट टू पे द कम्युनिटी बैक। वी हैव स्ट्रांग प्रेजेंस इन अवर सोसाइटी। वी स्पॉन्सर यू नो व्हाट, सो मेनी प्रोग्राम्स, कम्युनिटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एटसेट्रा। वी वांट टू शो द कम्युनिटी दैट वी आर विद देम इन एनी केस, इन केस ऑफ देयर इंजरीज, इन केस ऑफ देयर यू नो व्हाट बेसिकली कम्युनिटी एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, तो फिर भाई एक ही एक नंबर है जो आप बताते हैं अपने मखसूस अंदाज में। आपके लिस्टर्स हमारा नंबर नोट कर लें, और ड्राइव सेफ, बट इन केस एनी एक्सीडेंट जस्ट कीप दिस हॉटलाइन नंबर ऑन योर फोन सो दैट वी आर नियर यू। थैंक यू। तो फिर भाई
1: ये नंबर आपके पास सारा वक्त मौजूद रहना ही चाहिए, हर वक्त ये नंबर आपके पास हो, सेव कर लीजिए, डायल कर लीजिए 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं 416-937-5046। सैयद एम रजा बैरिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। और साहब इसके साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने ये बेड़ा उठाया है, जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो आपको ग्रांट और फंडिंग जरूर दिलाएंगे अगर आप एलिजिबल हो। बात करते हैं नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा, और इससे पहले हम दोबारा से रابطہ कायम करें नागपाल जी के साथ, आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें सुखी कौर जी के बारे में। और अगर आप मॉर्गेज की प्रॉब्लम से हो गए हैं दुखी तो कॉल कीजिए सुखी कौर। रीफाइनेंस, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकेंड मॉर्गेज, सेम डे क्लोजिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, बड़ी प्यार से, बड़े समझदारी के साथ आपकी सिचुएशन को समझ के आपको एडवाइस देती हैं, और उनकी एडवाइस अगर आप मान लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे उन तमाम हैप्पी लिसनर्स में आप भी शामिल होंगे जिन्होंने सुखी जी से कांटेक्ट किया और आज उनके पास एक बहुत ही अच्छी तरीके से मॉर्गेज है और वो उनको एंजॉय कर रहे हैं अपने घर को मॉर्गेज के साथ। 6474087066 6474087066।
1: और साथ निभा रहे हैं एक बार फिर से नागपाल जी, वेलकम करते हैं सर आपको एक बार फिर से।
3: थैंक यू जी।
1: बात कर रहे हैं ग्रांट और लोन की। पहली बात बताइए कि ग्रांट और लोन दोनों में क्या फर्क होता है, और अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो कितनी ग्रांट मिल सकती है तकरीबन, और कितना लोन होगा उसमें?
3: हाँ जी, सो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस शनिवार तक, कल तक वैलिड है क्योंकि गवर्नमेंट उसके बाद ग्रांट्स बंद कर रही है, तो ग्रांट वर्ड का मीनिंग सुनने का आपका फायदा ही नहीं है कल के बाद। तो आप तालीम हासिल करें, हुकूमत फंडिंग देती है आपको आपके खाते में जिसके दो पार्ट हैं, ग्रांट और लोन। ग्रांट तो वो पैसा है जो आपने कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते, वापस नहीं करना। लोन भी आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं बट लोन वापस करना होता है। तो इसलिए ग्रांट ह्यूज ग्रांट है, 200, 500, $700 की ग्रांट नहीं है, 30,000 to 100,000 की फंडिंग में। अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो अप टू 100,000 की फंडिंग उनको आती है उनके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट से, जिसका $50,000 हाफ पोर्शन 50,000 ग्रांट है। कब तक? कल तक। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है। आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन करें, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, कहीं भी ओंटारियो में रहते हैं, मिस ना करें। आपके सारे फ्रेंड्स फैमिली ले चुके हैं, आपको बता नहीं रहे, अच्छी चीजें लोग कभी बताते हैं दूसरे को। नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, और ऑफिस आए। हमारी चीज कितनी है सर? 199 या 499 काम होने के बाद। आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा, लेकिन आपका नुकसान है 30,000 to 100,000 का। पीछे ना रहे, नंबर नोट करें, 437-234-3175 437-264-3175। कॉल करो, एस्टिमेट लो, ऑफिस आओ, 437-234-3175 437-264-3175।
1: बहुत से लोग हैं वो उबर चलाते हैं, कहीं फ्रीलांस पे कोई रेनोवेशन कर रहा है, कोई हैंडीमैन है, घर में लेडीज हैं वो सिर्फ खाना वाना ही पकाती रहती हैं, बुजुर्ग हैं, काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या ये सब लोग भी इंटाइटल्ड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं?
3: यही लोग एलिजिबल है, हमें इतने कॉल आते हैं, हमारी इनकम 70,000-80,000 है, मना कर देते हैं, फायदा नहीं है आपको। अब गंजे कंगी बेचने का काम तो हमारा है नहीं, हमारे पास तो एक दिन में कम से कम 20-30 वॉक इन है। लोग आके बताते हैं, जिस एजेंट पे वो पहले जाते हैं उन्हें कॉल करते रहते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है कॉल करने का। हम इसलिए पहले ही कहते हैं कि आपकी इनकम कम है, नोटिस ऑफ असेसमेंट पे उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फंडिंग मिस ना करें, ग्रांट लें, तालीम हासिल करें, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, आराम से गारंटी मारिए पास हो जाएंगे। नंबर नोट करें, 2-3 घंटे आपने अटेंडेंस लगानी है, 437-234-3175 437-264-3175।
1: ग्रांट लीजिए और इंटरेस्ट फ्री लोन लीजिए, ये मौका गमाइए मत, हाथ से मत जाने दीजिए, ये नंबर मिलाइए 437-264-3175 437-264-3175। बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल।
3: थैंक यू जी, बहुत बहुत।
2: और इसी के साथ आपसे भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपको भी हमारा साथ देने के लिए, और होती है आपसे मंडे को मुलाकात। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। कॉल करने का नंबर है 416-303-3639, और आमिर और शिवानी को दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस वीकेंड, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRK Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jalda pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर. आखिरकार फ्राइडे आ ही गया और इसके साथ ही चेहरे पर मुस्कान अपने आप थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि फ्राइडे सिर्फ हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे नहीं बल्कि अपने आप को वेल डन कहने का दिन भी है. कहते हैं दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा विचार आपकी जिंदगी के नाम कि थकान अगर है तो मुस्कुराकर मिटा दीजिए, फिक्र अगर है तो थोड़ी हवा में उड़ा दीजिए. फ्राइडे है जनाब, दिल पर लगी धूल को हंसी से साफ कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी कामयाबियों का नाम नहीं, छोटे छोटे सुकून के पल भी उतने ही जरूरी हैं. तो चलिए दोस्तों, इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज का सफर. सबसे पहले रुख करेंगे कनाडा की लेटेस्ट खबरों की तरफ, उसके बाद बॉलीवुड कैलेंडर, फेवरेट सुपरहिट गाने, कुछ फिल्मी किस्से, खास मेहमानों से मुलाकात, अच्छी अच्छी डील्स एंड ऑफर्स. तो 4 बजे तक अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और भरपूर एंटरटेन्ड होने के लिए हो जाइए तैयार विद मी शालिनी. गुड आफ्टरनून.
5: Sean Express न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.

0: इटोबिको में महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आज सुबह इटोबिको के हम्बावुड बुलेवर्ड और रेक्सडेल बुलेवर्ड इलाके में हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये टारगेटेड शूटिंग थी, यानी हमला विशेष रूप से उसी महिला को निशाना बनाकर किया गया था। पुलिस ने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। एक नए सर्वे के मुताबिक होटल एक्सपेंस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद पहली बार ओंटारियो लिबरल्स को बढ़त मिलती नजर आ रही है। पोल के अनुसार 38% लोग लिबरल्स के सपोर्ट में हैं, जबकि पीसी पार्टी को 33%, एनडीपी को 24% और ग्रीन पार्टी को 2% का समर्थन मिला है। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल माहौल में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। कनाडा और अमेरिका को जोड़ने वाला गोर्डी हाउ इंटरनेशनल ब्रिज अब आम लोगों के लिए खुलने वाला है। विंडसर में आज इसका ऑफिशियल उद्घाटन किया गया है। ये पुल विंडसर को डिट्रॉयट मिशिगन से जोड़ेगा और मशहूर कैनेडियन हॉकी लेजेंड गोर्डी हाउ के नाम पर रखा गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ब्रिज मंडे दोपहर से यातायात के लिए खुल सकता है। अंत में नजर डालेंगे आज के लेटेस्ट वेदर अपडेट की तरफ। आज टोरंटो में रहेगी सनशाइन विद अ हाई ऑफ 25 डिग्रीज और रात का ओवरनाइट लो जा सकता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटडोर प्लान्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, लेकिन धूप में निकलते वक्त पानी साथ रखना ना भूलें। सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3 पर 4 बजे तक। गुड आफ्टरनून,
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, आपका स्वागत करती है शालिनी CMRFM 101.3 पर विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में. और आज फ्राइडे का फैंटास्टिक दिन है. आज बड़ा हैपनिंग सा दिन है और इस दिन अगर आपने एक बात सुन ली और उस बात पर अमल कर लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है. यानी आप जिंदगी भर जीत सकते हैं. कैसे जीत सकते हैं जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विन लाइफ टाइम की तरफ और हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी. Rafi ji, good afternoon and welcome to the show.
2: Thank you very much. Good evening, good afternoon to you and your listeners.
1: वेरी गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच वंस अगेन राफी जी. तो चलिए, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि ये एक वर्किंग वीक का लास्ट डे होता है और इसके बाद लोगों को प्लानिंग करनी होती है सैटरडे की. और हमारे कई सारे लिसनर्स ने आपकी सैटरडे का जो फ्री सेमिनार है उसके लिए अपनी सीट्स बुक की हैं. पर जो लोग नहीं कर सके उनको बताएं कि कल ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हम सभी लोग अपनी लाइफ को एक बड़ा पॉजिटिव सा टर्न दे सकते हैं.
2: देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी हर मौके पे आती है. 2008 से हम सेमिनार करते आ रहे हैं, हजारों लोगों ने सेमिनार सुना है, कुछ पहली दफा सुन रहे हैं. मैं यही कहता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा स्किल लाइफ में लेके आना है कि आपको कल आने वाले पैसों की स्ट्रेस ना हो, आपको अपनी जॉब का खतरा ना हो, एम्प्लॉयर का खतरा ना हो, बिजनेस का खतरा ना हो, तो कोई ऐसी स्किल सीख लें जो रिसेशन प्रूफ है. ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये हम सिखाते हैं, पिछले 18 साल से सिखाते आए हैं. ऑफ कोर्स जब आप भी हमारा ऐड लेती रही हैं तो हम यही कहते थे पहले इसको ज्वाइन करें फिर आपकी कन्विक्शन खुद ही आ जाएगी.
1: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है. तो कल आपका सेमिनार है राफी जी, तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, क्या प्री रिक्विजिट चाहिए इस ट्रेडिंग बिजनेस को सीखने के लिए और इससे पैसे कमाने के लिए.
2: ट्रेडिंग की प्री रिक्विजिट यही है, आप गुड फॉलोअर है, वो आपको इंस्ट्रक्शन हम जो दे हैं वो फॉलो कर सके. ना आपको कोई अकाउंटिंग चाहिए, ना सॉफ्टवेयर की कोई स्किल चाहिए. बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करें और फिर एक्सपर्ट सुपरविजन के नीचे हम आपको बिठा देते हैं और एनीवेयर फ्रॉम 14 डेज टू 2 मंथ्स आप सीख जाते हैं.
1: 14 दिनों से 2 महीने तक का टाइम देना है दोस्तों आपको. आपने जैसे सुना तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो यू नो 14 दिन थोड़े से कम स्मार्ट हैं, या मैं ये कहूं कि थोड़ा सा कम वक्त दे रहे हैं अगर, तो शायद 2 महीने आपको लग जाएं, राइट, अगर आप किसी और काम में हैं. तो क्या इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ किया जा सकता है राफी जी, और इफ यस तो इसमें कितनी फंडिंग डालनी होती है?
2: आसान क्वेश्चन पहले करता हूँ, कोई फंडिंग नहीं डालने, क्योंकि मैथ्स के भी पेपर में पहले लोग स्टूडेंट्स आसान कर लेते हैं. तो आपके 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला है कि आपने अपने पैसे इस इंडस्ट्री में नहीं डालने. ये हमारी, मैं आपसे बेग करता हूँ कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो अपने पैसे ना लेके आए. हमारे पास ऐसी फर्म्स हैं जो कैपिटल दे देती हैं, सारे का सारा रिस्क वो लेती हैं. नंबर 2, कौन कर सकता है? कोई भी करे, पार्ट टाइम जरूर शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता लें. लो स्टार्ट करते हैं $50 to $100 a day और आज हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. आज के भी के पीपल हैव टेकन $15,000-$20,000 होम टुडे विदाउट इन्वेस्टिंग.
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, कल बिल्कुल फ्री सेमिनार है और दोपहर के 1 बजे मिसेस आगा की 2 लोकेशंस पर होने जा रहा है. फ्री सीट है, आप जल्द से जल्द बुक कराएं. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी. winlifetime.com 10 नंबर के फासलों पर खड़ी है आपकी अपॉर्चुनिटी. गो एंड grab it before it's too late. 905-206-1008, that's 905-206-1008. Thank you so much humse judne ke liye Rafi ji. Have a great weekend, phir aap se judenge.
2: Thank you. Take care. Welcome.
3: Jamming as much variety into your workday as possible.
4: Radio Resync complete.
5: Hit music.
6: Hit after hot hit.
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग. स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600.

0: पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111। ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020, that's 416-315-2020.
3: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Delhi to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School, Canada, Jadu Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, Free Children Arts and Balloon Making Workshops, Children's Mardi Gras Parade with Marching Band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
8: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते जावा।
9: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
8: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
9: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, Midda Furniture.
2: वेल दोस्तों, मिड्डा फर्नीचर गैलरी आपकी वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द वीकेंड वाइब्स। और शॉप नहीं है, टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच लोकेशंस टू सर्व यू। जॉइनिंग अस नाउ इज पवन मिड्डा जी। पवन जी, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
10: थैंक यू जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर, चारों लोकेशन से आपकी सेवा कर, सॉरी, पांच लोकेशन देखो फुल क्योंकि डेढ़ महीना हो गया। वैसे तो आपका प्यार बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, और मैं हैट्स ऑफ टू मैं आपकी सारी कम्युनिटी को कहूंगा। वैसे तो हम प्राउड टू बी कनेडियन, हर बहन भाई हमें पूरा प्यार देते हैं, लेकिन लंदन में भी हमारी कम्युनिटी ने, साउथ एशियन कम्युनिटी ने, मतलब कहते हैं ना भाई, दिल से, आई गॉट इमोशनल की दिल से मोहब्बत प्यार दिया, सिर पे हाथ। मतलब एक आंटी आई, वो कहते मैं पुत्र रेडियो सुन दिया, तू बोलता बहुत चंगा, मतलब मेरे
2: हाउ स्वीट,
10: सिर पे हाथ रखा।
2: वेरी नाइस।
10: फर्नीचर लेना देना बेचना और चीज है। वो एक बुजुर्ग मतलब मेरे ख्याल आई थिंक शी इज ओवर 80, वो अपनी फैमिली के साथ चल के आएंगे, वो गुरुद्वारे से आए और वो सिर पे मैंने सिर पे हाथ रखना है।
11: क्या बात है?
10: तो एक माँ कर सकती, एक माँ सोच सकती है, बड़ी बहन सोच सकती है, मतलब बाकी पैसा तो कहते हैं ना बिल गेट्स के पास भी होगा, बड़े बड़ों के पास होगा, पर आई फील आई एम द रिचेस्ट इन द इमोशन द हमने जो जब आप मिली थी मेरी छोटी बहन विशालनी जो प्यार मिला ना ये तो उसको मतलब मैं उसका कर्ज उतार ही नहीं सकता। ये हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो अक्से वजह से चल रहा है और होनेस्टी को सराहा जा रहा है, नहीं तो वो हम भी दूसरों की तरह भी ढोल पीट रहे होते या इतने वाला इतने कर दिया इतने कर दिया इतने बिलियन की इन्वेंट्री क्लियर कर दी ये कर दिया वो, फर्क कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, कस्टमर को तो एंड प्राइस से और कस्टमर को हम भी समझते हैं, कस्टमर जो ढूंढ रहा है उसे प्राइस अच्छी मिली, मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ फर्नीचर के अलावा तो मुझे आई केयर कि मुझे सस्ती मिलना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी निकलनी चाहिए। तो हमारे से यही वादा है क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विस अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा और यहाँ प्राइस 10-30% सस्ती होगी। आज हमने 4-5 आइटम में बहुत समर सेल बेसिकली जैसे और आप मैं सोचता हूँ कई बार बंदे को आदत ही पड़ जाती है, वही सुन रहे हैं अभी हमें फ्री नहीं मिला तो हमने भी वो शुरू करा 3-4 आइटमों पे, एक बेड लगाया हमने सॉलिड वुड व्हाइट कलर का बेड है, कमरे में भी लाइट है, ड्रेसर में भी लाइट है, नाइट टेबल भी है, 1599 का 1599 के साथ 10 इंच वाली क्योंकि बोल रहे हैं मैट्रेस बहुत सारी होती है 10 इंच की पिलो टॉप मैट्रेस फ्री
11: जी,
10: उसके साथ एक गिफ्ट फ्री और गिफ्ट वैसे तो $5 वाला नहीं, गिफ्ट की वैल्यू भी आपको अमेजोन पे दिखा देंगे 129 का लगा हुआ सीक्रेट है मतलब अपने
11: जी।
10: और इसके अलावा हमारे पास बेड है वो 10 स्टॉक में और ये 6 पीस का बंडल प्राइस है, लेकिन हमारे पास 3 एक्स्ट्रा नाइट टेबल भी है, 3 एक्स्ट्रा नाइट टेबल है, तो पहले 3 फैमिलीज या कोई भी मतलब अगर जगह ही नहीं है तो आप करोगे क्या कोई वो हमारा 3 क्योंकि वो हम स्टॉक क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई बहन भाई एक्स्ट्रा नाइट टेबल भी मांगेगा 1599 में, उसकी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, ये देखो ये है वो सच्चाई वाला और भाई बहन वाला प्यार, वैसे तो अगर आप कोई मांग ले एक्स्ट्रा तो हम 400 मांग के खड़े होंगे ना, लेकिन हमारे 3 किसी काम भी नहीं आएंगे, अगर सपोज करो आप एक एक एक ही लेके जाते हो तो हम चाहते हैं अगर कोई सी बहन भाई को चाहिए तो वो भी आपको फ्री दे दिया जाएगा, तो आप आए अजमाए हमें अपना बनाए, जब मैं अजमाइश की बात कहता हूँ कि आप जब एज ए कस्टमर हमें आप चेक करेंगे और फिर पाएंगे कि जो हम रेडियो पे बोला जा रहा है वो सच भी है कि नहीं, मतलब अगर फिर तो गिमिक्स में तो क्या फर्क, अगर हमने भी वही करा जो और कर रहे हैं सॉरी माफी मांगते हुए कि अगर गिमिक्स ही कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा हुआ, फिर अपना तब तो ना हुआ ना, फिर हम भी तो दूसरों की तरह दुकानदार ही हुए, तो बिल्कुल दुकानदार हैं, 2 पैसे कमा के बेचना हमारा मतलब रोकी रोजी तभी किराए भाड़े खर्चे तभी निकलते हैं हर दुकानदार के, लेकिन हम गिमिक्स नहीं करते। तो आप आए हमें अजमाए पहले, इसी तरह एक बेड लैकर का भी लगाया हुआ है, कैनेडियन मेड सोफा लर्सिट हमने एक लगाया हुआ है 899 का, जैसे एक हाइड्रोलिक वाला बेड जो है वो हमने लगाया हुआ है, अब डाइनिंग D631 बेंच उसका फ्री है, तो एक्चुअली आप चेक कर लें D631 गूगल पे डालें, हमारी प्राइस है 1299। पहले नंबर तो वो प्राइस हमारी बाजार से 30% कम है, मतलब बाजार में 1600-1700 का मिल रहा होगा हम 1300 रुपए दे रहे हैं, ऊपर से बेंच फिर फ्री दे रहे हैं, तो ये मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा कि आपका प्यार कर रिटर्न गिफ्ट आपको वापस कर रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा उसके लिए, किसी भी लोकेशन पे आप आए मिडना फर्नीचर, और इसके अलावा जो आप ढूंढ रहे हैं आपके पास कोई मॉडल आप ढूंढ रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे आपको नजर नहीं आया हमारे स्टोर पे नजर नहीं आया, इफ इट्स एक्सेसिबल टू अस वो मिनिमम 10 तो कम कर ही देंगे, अगर हो सकता 15-20 कम, अगर उसमें गुंजाइश है तो कंटेनर में मंगवा के आपको वो भी कम करके दे सकते हैं, तो आपको आना पड़ेगा मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 हमारा नंबर है, और मिड्डा फर्नीचर.com इज द वेबसाइट, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू,
11: थैंक यू सो मच पवन जी, वंडरफुल अपडेट, और बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे हम मस्ती की रेलगाड़ी पर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वेल दोस्तों, अब खोलते हैं बॉलीवुड का कैलेंडर, और पहला पन्ना जो है आज एक बर्थडे है वो मनाते हैं, और एक मेहमान है हमारे स्टूडियो में, और कहते हैं कि जो हार्डवर्क है ना उसकी बहुत ही अनोखी मिसाल इन्होंने कायम की है हमारी कम्युनिटी में, सुबह से लेकर शाम तक ही सेट्स एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हिज होल टीम कि हार्डवर्क कैसा होता है, ये नहीं कि एज अ बॉस एज एन ओनर ही इज नॉट वर्किंग एंड अदर्स आर वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्डर देन अदर्स, तो मैं थोड़ी आपकी एक्साइटमेंट को बिल्डअप कर दिया है और उनसे मुलाकात करेंगे आज जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इन स्टूडियो है. इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम विद अस. और यश विंडोज एंड डोर्स के जो कर्ता धरता है, जो फाउंडर हैं, धर्म जी इज विद अस इन स्टूडियो. उनसे करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी मुलाकात. और उनके फेवरेट एक्टर हैं मनोज कुमार, जो आज बर्थडे मना रहे हैं. और बॉलीवुड में जब भी दोस्तों देशभक्ति की बात होती है ना, तो एक ऐसे अभिनेता का नाम आता है जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए देश प्रेम, भारतीय जो संस्कृति है और जो इंसानियत है उसका मैसेज दिया है. और यही वजह है कि पूरा देश उन्हें प्यार से भारत कुमार कहकर बुलाता है. आज बातचीत करेंगे उस अभिनेता, निर्देशक और लेखक की जिनका नाम है मनोज कुमार. और आपको बताएं, ये जब पैदा हुए थे तो इनका असली नाम जो था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था. 24 जुलाई 1937 को ये जब इंडिया का जब विभाजन हुआ था तो वो पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे थे. फिर वो जब विभाजन के बाद इंडिया में आ गए थे और दिलीप कुमार से इतने प्रभावित हुए कि उनकी फिल्म शबनम में निभाए गए किरदार मनोज से बड़े इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार कर लिया. तो आइए दोस्तों, इन्हीं को डेडिकेट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3. एंजॉय करें और फिर हम करेंगे एक बड़ी प्यारी सी मुलाकात हमारे अपने धर्म जी इज विद अस इन स्टूडियो. गुड आफ्टरनून.

0: मस्ती की रेल गाड़ी पर मेरे यानी शालिनी के साथ बिग हेलो टू आर सोशल मीडिया फैंस एज वेल। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ इन स्टूडियो आ चुके हैं धर्म जी फ्रॉम यश विंडोज एंड डोर्स। बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं होता, बड़ा कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए हैं आज जस्ट इन स्टूडियो। और सभी लिसनर्स आपको हम रूबरू कराते हैं। धर्म जी, ग्रेट टू हैव यू विद अस टुडे लाइव हियर।
1: थैंक यू वेरी मच मैम, आपको और सारे श्रोता को जुक जुक कर नमस्कार करता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो तमाम रोड शोज चल रहे हैं यहाँ पर धर्म जी, बैनर्स नजर आते हैं यश विंडोज एंड डोर्स के दूर से, और एक नया स्टोर भी खुल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हर पल हर दिन हमारे साथ नए लिसनर्स जुड़ते हैं, तो उन्हें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि यश विंडोज एंड डोर्स किस तरह की कंपनी है एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
1: यस विंडोज एंड डोर्स एक फैमिली ओन कंपनी है। 2012 में हमने ये ऑपरेशन शुरू किया था। हमारी टोरंटो में दो फैक्ट्रीज हैं, विंडो डोर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। और वी आर द ओनली कंपनी इन ऑन्टारियो वो 34 प्रोफेशनल्स इंस्टॉलर के साथ हम जो विंडो डोर बनाते हैं
0: जी,
1: उसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं अक्रॉस ऑन्टारियो। हम सबसे अलग क्यों है
0: जी?
1: हम अकेली कंपनी है जो 30 साल की वारंटी देती है मल्टीपोल लॉक सिस्टम पर। जो पहले ये बोलता हूँ, मल्टीपोल लॉक सिस्टम लोई 366 जो ग्लास अपग्रेड ऑप्शन में दूसरी कंपनियां देती हैं, हम बाय डिफॉल्ट देते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और फ्रेम 30 साल की वारंटी, हमारी 30 साल की वारंटी फ्रेम में है। अगर 30 साल के अंदर आपका ग्लास सील फेलियर के कारण अगर पानी चला गया तो 30 साल बहुत लंबी वारंटी होती है।
0: क्या बात है। तो इतनी बड़ी गारंटी आपने दी है धर्म जी, एंड इट मीन्स अ लॉट। और ये भी हमने सुना है कि जो बाहर हमें अपग्रेड के बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो आपके यहाँ से जब यश विंडोज एंड डोर से लिया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट वो अपग्रेडेड ही माल मिलता है आपके यहाँ।
1: लोगों को लगता है कि हमने अपग्रेड दिया हुआ है, लेकिन ये आपकी जरूरत है। जब जनवरी फरवरी में विंटर आता है, मार्च में विंटर आता है, जब -25, 27, 28, 30 डिग्री तक जाता है, तब आपको हमारी कीमत पता लगती है कि -11 डिग्री की जो लोई 180 पूरा ऑन्टारियो दे रहा है, इसके सामने लोई 366 -27 डिग्री, इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस।
0: वेरी नाइस। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि कोई मिडल मैन नहीं होता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है और आपके जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर्स हैं वो प्रॉपर्टी पर जाकर इंस्टॉल करते हैं, तो बीच में मिडल मैन की जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है वो नहीं होता कभी।
1: बहुत बड़ा फर्क है। आपको अगर जब आप इंस्टॉल करवाओगे और हमारे जो कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर है उनको आपकी सिटी में पूछोगे तब आपको पता लगेगा कि हाउ वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट टू एनी कैनेडियन कंपनी।
0: क्या बात है। और एक चीज और मैंने सुनी है कि चाहे प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो, चाहे प्रोजेक्ट कितना छोटा हो, उतने ही सीरियसली काम लिया जाता है। और कई जगह तो आप खुद जाते हैं ओवरसी करने के लिए ऑपरेशन।
1: हम लोग एवरी डे एक ऑपरेशन पे जाते ही है। मैं जाता हूँ, यश जाता है। हर हफ्ते में मैं एज अ सेल्स पर्सन खुद एक कस्टमर के वहां अपॉइंटमेंट में जाता हूं। यश बाय हिमसेल्फ इज एवरी डे गोइंग 3-4 अपॉइंटमेंट्स अ डे एवरी डे।
0: You are setting an example in front of your kids and also all your workers. और बहुत ही personalized आपकी approach रहती है, चाहे आपकी company का मसला हो, चाहे कहीं जाकर कुछ work करना हो, it's great. और आपके जो state of the art showrooms हैं वो लोगों को लगता है कि इतने अच्छे showrooms तो यहाँ पर Canadian companies के नहीं होते, जिस level के आपने बनाए हैं और हर एक city में नजर आ रहा है अब तो कुछ बताएं हमारे viewers को और हमारे listeners को कि कहाँ कहाँ है showrooms।
1: मैं बैरी की शोरूम की अभी बात करूं तो बैरी के शोरूम की जो अप्रोच आई, हम 5 लोगों को अलग अलग लोगों को लेके गए थे।
0: अच्छा।
1: 4 लोग बैरी में से थे, एक लोग टोरंटो बेस था जो बैरी में गए थे, ये 5 लोगों का। और हमने उनको बोला था कि अलग अलग जो भी बैरी में अलग अलग दूसरी कंपनियों के शोरूम में वहां जाइए और प्लीज कंपेयर अस वेरी ऑथेंटिकली। उनका सेंटेंस ये था कि पूरे बैरी नहीं, पूरे सिमको में विंडो डोर का ऐसा शोरूम किसी कंपनी का नहीं है, कोई नजदीक भी नहीं है।
0: वेरी नाइस, क्या बात है धर्म जी. और जो नई फ्रेंचाइज अगर हमारे लिसनर आपके साथ ज्वाइन करना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें, एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा मार्जिन है जैसे आपने मुझे बताया ही था, तो प्लीज बताएं कैसे वो आपके टीम का हिस्सा बन सकते हैं.
1: मैं आपको अभी ब्राम्पटन फ्रेंचाइजी की जो लेडी है
0: जी,
1: वो दो बच्चों की माँ है.
0: अच्छा.
1: एक बेटा बेटी है उनकी 4 साल की, एक बेटी है 8 साल की.
0: अमेजिंग.
1: अब ऐसी ऐसी मैडम का अभी एक सेंटेंस था कि अभी जो एक महीने पिछले एक हफ्ते में शी डिड मोर देन $100,000 बिजनेस.
0: सीरियसली, एक हफ्ते में 100,000 का बिजनेस.
1: इस लेडी ने एक हफ्ते में $100,000 का बिजनेस किया हुआ.
0: वाओ, दैट्स ग्रेट.
1: अब ये मैं रेडियो पे अनाउंस कर रहा हूँ.
0: जी जी.
1: आप इस चीज बिजनेस, ये विंडो डोर बिजनेस है.
0: जी जी.
1: यह आपको $10-15 की चीज बेचने नहीं है, आपको $10-15,000 की चीज बेचनी
0: है.
1: क्या बात है. घर घर जाके. और वी आर द ओनली कंपनी हु इज गोइंग टू डूइंग राइट नाउ 95% रिटेल करते हैं.
0: अमेजिंग.
1: सारी कंपनियां 95% होलसेल में माल दे के किस्सा खत्म करो. हम लोग 95% जो बिजनेस करते हैं वो रिटेल करते हैं, और हम 41,000 स्क्वायर फीट में बैठे हुए हैं.
0: क्या बात है.
1: हम 2-3,000 स्क्वायर फीट की छोटी जगह लेके बैठे नहीं हुए हैं. तो ये बहुत बड़ा फर्क है. Beautiful. व्यापारी हो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे तो आपका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है.
0: Beautiful.
1: तो मैं फ्रेंचाइजी की ये गारंटी देता हूँ कि 90% तक का प्रॉफिट एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर के साथ इन्वेस्टमेंट, छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर आपको से कम इन्वेस्टमेंट में
0: जी जी.
1: आपको इतना बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको मिल रहा है जो अगले जनरेशन को भी आप दे सकते हो.
0: क्या बात है. तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं, विंडोज डोर्स आप अपने घर में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में लगवा सकते हैं, ऑफिस में, एट द सेम टाइम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी रन कर सकते हैं. वन नेम टू कंसिडर, only one name, which is Yash Windows and Doors. Number note kar lein, 416-732-3600. Dharam ji, anything else would you like to add?
1: No madam, weather bada acha hai, sabko apni health ka dhyan rakhna chahiye.
0: Yes.
1: Sab bar ghumne jao, ghar mein mat baithe raho.
0: All right. So on this note, main ek bar phir se number announce kar dun, 416-732-3600, Yash Windows and Doors. Thank you Dharam ji for joining us.
1: Thank you very much.
0: Good luck.
1: Ma'am, have a wonderful day.
0: You too. Chalte hain doston, ek chote se break ki taraf, aur phir chalenge agla segment aap tak pahunchayenge masti ki railgaadi par. Stay tuned. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
4: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
5: 416-890-3232. स्टोर देखे पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओ दा तां जवाब है नहीं.
6: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है.
5: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263. कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100. ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो ग्रांट और लोन के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप पीआर या कनेडियन सिटीजन हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेड 12 है, नो बैंक्रप्सी और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। नो क्रेडिट चेक, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रांट और लोन का कॉम्बिनेशन 31 जुलाई तक अवेलेबल है। देर ना करें, आज ही कॉल करें 416-315-2020, दैट्स 416-315-2020।
9: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आइए अब जो आज की सनशाइन है ना, उसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत सनशाइन नजर आ रही है ना यहाँ से, बस मेरा दिल कर रहा है अच्छे अच्छे सनग्लासेस लगा लूं। और आज मैं सनग्लासेस लाने भूल गई, तो मुझे लगता है मुझे आज तो जाना पड़ेगा स्पेक्स एक्सप्रेस, और जो उनकी लास्ट वाली डील है ना, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। कोई ना कोई ब्रांडेड सनग्लासेस तो होने चाहिए, मेरा इंट्यूशन कह रहा है। आइए राजन जी से पूछते हैं। राजन जी, गुड आफ्टरनून।
10: गुड आफ्टरनून शालिनी जी, थैंक यू सो मच आपको और सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून।
0: थैंक यू वेरी मच राजन जी, एंड व्हाट अ वंडरफुल डे। आज का दिन बड़ा ही अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, लेकिन जो सनशाइन है ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग।
10: बिल्कुल जी बिल्कुल, सो ऐसे मौसम को जरूर एंजॉय करना चाहिए, और मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलूंगा कि जब इस मौसम का आप एंजॉय करें तो मेक श्योर आप अपनी आईज को प्रोटेक्ट करें, जरूर सन ग्लासेस पहन के रखें, और अगर आप अवेयर कर सकते हैं अपने आप को तो मेक श्योर कि आप अपनी पोलराइज सन ग्लासेस पहने, क्योंकि ये जो पोलराइज सन ग्लासेस होती हैं जी, ये स्पेशली मेंट है इस सीजन के लिए, जिसमें जो सन रेज इतनी ब्राइट इतनी शार्प होती है कि आपकी आंखों को डैमेज करती है। तो सन ग्लासेस जो आपके होने चाहिए, एक तो ब्रांडेड होने चाहिए और दूसरा पोलराइज होने चाहिए। और अगर आप सोच रहे कि ये बहुत महंगे होंगे, तो आप चले आए स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, क्योंकि सेल बहुत बढ़िया चल रही है जी। 2026 की समर कलेक्शन हमारे पास पहुंच चुकी है, इसमें गुची के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के, प्राडा, ब्लेंसियागा, वर्साची एंड बर्बरी, ये सभी ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर एंड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है।
0: Nice.
10: और मैं रिपीट कर दूं कि ये फ्लैट है, ये अप टू नहीं है, ये नहीं आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा कि जब आप स्टोर के अंदर एंटर करें तो आपको हो कि ये मॉडल जो मेरे को पसंद आया ये ओनली 10% ऑफ है। आप कोई भी मॉडल चूज कर लें, हर मॉडल आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट पे मिला जी। ऐसे ही अगर आपको अरमानी के सनग्लासेस चाहिए, या फिर मार्क जेकब के, माइकल कोर्स के, केट स्पेड के, या फिर ह्यूगो बॉस के, पोलो के, टॉरी बर्च के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस एंड ब्रांडेड फ्रेम्स आपको आज मिलेंगे जी फ्लैट 50% ऑफ।
0: क्या बात,
10: तो ये 50% ऑफ ही अगर आप लेना चाहते तो भी आप पहुंच सकते हैं जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर।

0: उन्होंने आई एग्जाम भी करवाना है। तो आई एग्जाम के लिए डॉक्टर हमारे पास जी आज 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी क्रेडिट व्यू एंड सैंडलवुड वाली लोकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हमारे लिसनर्स आज अवेलेबल नहीं है और वो कल आना चाहते हैं तो कल सैटरडे को हमारे रेजोल्यूशन ड्राइव जो कि 410 एंड 3 के ऊपर है वहां पर भी डॉक्टर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है जी। और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर हमारे आई एग्जाम होता है, विजन चेक होती है, आंखों की हेल्थ चेक होती है। और शाह जी हमने ना एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मंगवा के रखे हैं। अगर घर पे आपके बुजुर्ग है तो उनके लिए हमने OCT एंड रेटिनोग्राफी की मशीन मंगाई है जी, जो आंखों में विदाउट ड्रॉप्स डाले आपकी आंखों का रेटना स्कैन कर देती है। रेटिनोग्राफी मशीन है जो रेटना की इमेजेस लेती है। और अगर आप बच्चों का एग्जाम करवाना चाहते हैं तो हमने स्पेशली टोपोग्राफी की मशीन रखाई है जी, ये बच्चों की एक्सेलेंट मेजर कर लेती है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका नंबर बहुत जल्दी से बढ़ता है या अगर वो स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये खास करके ये मशीन आपकी बहुत हेल्प करती है।
1: अरे वाह।
0: तो ऐसा डिटेल एग्जाम अगर हमारे लिसनर्स करवाना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करें 905-460-8888, 905-460-8888।
1: अमेजिंग।
0: और साथ के साथ हमारा जी वैल्यू पैकेज, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमारे पास बहुत नई रेंज आई है जी ब्रांडेड फिल्म्स की। तो इसमें लंदन फॉग, लिवाइस, रैंगलर, वैन हिल्सन, एडी बावर, रूट्स, आइजोड तकरीबन 700 से 800 फ्रेम डिस्प्ले के ऊपर लगे हैं।
1: क्या बात?
0: और ये सभी के सभी फ्रेम हम आपको दे रहे हैं वैल्यू पैकेज में। सो $300 की कीमत का फ्रेम वैल्यू पैकेज में इंक्लूडेड है जी, साथ में $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज ये भी इंक्लूडेड है वैल्यू पैकेज में। 400 का पैकेज हम अपने लिसनर्स को ओनली एंड ओनली $129 में दे रहे हैं जी, ओनली 129।
1: अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल।
0: जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए एसिल और कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं जी, $300 की कीमत के लेंसेज एंड $300 की कीमत का फ्रेम, 600 वाला पैकेज ओनली 258। और साथ के साथ अगर आप अपने ग्लासेस के ऊपर कोई भी कोटिंग ऐड करवानी है तो सभी की सभी कोटिंग फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है।
1: अमेजिंग।
0: और अगर आप चाहते हैं कि दो पेयर हों आपके पास, एक घर पे रखना है एक ऑफिस में या गाड़ी में, पहले पेयर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है, दूसरे पेयर के ऊपर कोटिंग 100% ऑफ, यानी कि एब्सोल्युटली फ्री।
1: अमेजिंग, क्या बात है,
0: अमेजिंग अमेजिंग डील्स हमारे लिसनर्स लेना चाहते हैं
1: जी।
0: तो जरूर पहुंचे जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, ये 410 एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी वॉलमार्ट वाला प्लाजा, या फिर 10635 क्रेडिट व्यू रोड, क्रेडिट व्यू एंड सैंडलवुड की इंटरसेक्शन है। और अगर आपको डायरेक्शंस लेनी है या पूछना है कि कहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर कहाँ पर अवेलेबल है, या कोई भी आपकी और इंक्वायरी है तो एक ही नंबर 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट है शालिनी जी बताते चले, मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सन ग्लासेस।
1: अमेजिंग।
0: तो नंबर एक ही है जी 905-460-8888। और जाते जाते मस्ती की रेलगाड़ी के लिसनर्स के लिए स्पेशल स्पेशल डील,
1: आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, ओके लेट्स हियर इट।
0: तो जो भी पहले 5 कॉलर्स हमें कॉल करेंगे जी, उनको हम आज टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं जी। चाहे आपने लेडीज के लेने हो, जेंट्स के लेने हो, टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ फॉर फर्स्ट 5 कॉलर्स।
1: ब्यूटीफुल।
0: एंड अगर आपको पसंद है ज्यादा स्टोन वर्क और आप चाहते हैं कि टिफनी के सनग्लासेस आपकी चॉइस है तो पहले 5 कॉलर कॉल कर लें तो हम टिफनी के ब्लेंडेड सनग्लासेस ये भी फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं सिर्फ मस्ती की रेल गाड़ी के लिसनर्स के
1: लिए।
0: क्या
1: बात है, अमेजिंग।
0: टोटल आज 10 है जी, 5 टॉम फोर्ड के, 5 टिफनी के, अभी कॉल कर अपना नाम लिखवा दें। और जरूरी नहीं कि आपने आज ही पिक करने हैं, अगर आपने नाम आज रजिस्टर कराया तो आप नेक्स्ट वीक तक कभी भी आकर ये ग्लासेस पिक कर सकते
1: Very
0: हैं। नंबर टू कॉल जी 905-460-8888, 905-460-8888,
1: 905-460-8888 पर दोस्तों राइट अवे कॉल करें। मैं तो चली अपने सनग्लासेस लेने, आप भी पहुंचिए स्पेक्स एक्सप्रेस पर। थैंक यू राजन जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
0: थैंक यू।
1: जी दोस्तों।

आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेशनल कजिन्स डे है। कजिन्स यानी वो रिश्तेदार जो अक्सर हमारे पहले दोस्त भी होते हैं, तो अपने कजिन को हेलो जरूर कह दें। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे भी है, अपने आप को ना भूलें, अपने आप को भी वक्त दें, ऐसा करें कुछ जो आपको भी पसंद हो। नेशनल डे ऑफ मोटरिंग भी है, रोड ट्रिप का अपना ही मजा होता है। मस्ती की रेलगाड़ी से जब आप उतरेंगे ना, तो फिर अपनी गाड़ी लेकर रोड ट्रिप पर जरूर निकल जाइएगा। और नेशनल ड्राइव थ्रू डे भी है, तो आप कुछ खाना चाहते हैं तो ड्राइव थ्रू से लेते हुए जाइए। बहुत कुछ है आज के दिन में, आइए दोस्तों एक दिन आज आप मुझसे मिल जाएंगे। बहुत प्यारा सा गाना है, आपकी नजर करेंगे आज के दिन को देखते हुए, और मस्ती की रेलगाड़ी पर एंजॉय।

0: और क्या आपने सोचा था कि पवन मिधा जी आपकी जिंदगी में आएंगे और हर वीकेंड डील्स की झड़ी लगा देंगे? ऐसे ही होता है दोस्तों, लाइफ में कब कौन कहाँ मिल जाए पता ही नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं, पवन जी से पूछते हैं कि उनकी किटी में अब कौन कौन सी डील्स हैं हमारे लिए। पवन जी, वेलकम बैक।
1: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही होगी, मेरे पे तो रही है कि मैं यहाँ पे आया, फिर बहनों से मिला। इसका क्रेडिट आपको जाता है वैसे कि मैंने आई थिंक पहले भी एक बार कहा था, मैंने देखा तो फेसबुक पे था, आजकल वो भी आपको अपडेट करती है, वो कहते हैं अगर आप सारे दिन फिश मार्केट में रहो और वेजिटेरियन हो आप, मतलब फिश खाते भी नहीं, लेकिन आपके कपड़ों में से वही फिश की स्मेल आने शुरू हो जाती है।
0: सही बात।
1: और फ्रेग्रेंस वाली दुकान पे रहो अगर आप, और आप लगाओ या ना लगाओ फिर भी आप में से वही आती है। तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है जब अच्छे बहन भाइयों की संगत में आप जाते हैं, तो आप उस रास्ते पे चल के हमें स्लो मिली होगी शायद, मैं उसको कंप्लेंट नहीं कह रहा, लेकिन होनेस्टी से बिजनेस करने से भी प्यार जब मिलता है तो वी आर ब्लेस्ड। तो ऊपर वाले की कृपा रही कि वैसे बड़ा प्राउड है भारत में पैदा हुए, उस जन्मभूमि पे बहुत प्यार मतलब मान है, और कनाडा आने के बाद तो आई थिंक नॉट ओनली मी, जितने हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, इस धरती ने हमारे को हमारे ड्रीम्स आई थिंक ट्रू कराए, ड्रीम्स जो है वो हमें सारे जो हम ड्रीम देखे थे वो हमारे पूरे हुए, और हम लोगों ने मेहनतें भी करी, मतलब वो घंटे मत गिनो हमारे कि हमने चाहे डबल काम कराओ, लेकिन इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया, आपका प्यार, हमें प्यार भी मिला, साथ भी मिला, रोटी रोजी भी मिली, और ये आगे ये मिलता रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्तों की डोर को लंबा भी करेंगे और स्ट्रांग भी करेंगे।
0: Wonderful.
1: तो फिर जब ये बात आ गई है तो फिर जो भी आप लेना चाहते हैं, फिर कहते हैं ना जो मान से 10-15 जो कम कर सकेंगे वो क्यों नहीं कम करके देंगे आपको।
0: क्या बात।
1: तो फिर आप एक लाइन में ही कह देते हैं कि आप आए तो सही, अजमाएं तो सही, अपना बनाएं तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस चीज की 4 आइटम मैंने बोली थी पिछले बार, फिर आप कहेंगे ना इस पे भी भाई डील बना दो, इस पे भी बना दो, फिर बना देंगे फिर। तो ये तो इस बार तो इस समर डेल सेल को प्यार की सेल कह के बोलते हैं, आप आए और हमें अजमाएं, ये That's your right. Being a customer, क्योंकि ये जो जितना कुछ मैंने बोला ये सब बातें रह जाएंगी अगर हम कहीं प्रूफ रॉन्ग हुए। मैं ये नहीं कह रहा वी आर द एंजल कि हम 100% हर जगह में सही होंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आई थिंक मेरिट पे पास होंगे, मोर देन 90% मार्क्स,
0: वेरी नाइस
1: मार्क्स लेके पास होंगे। कई बार आपको लगता है कि आप हर आइटम पे नहीं कई बार डिस्काउंट कर पाते, क्योंकि जैसे दूध दही ग्रोसरी हर ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है, कुछ एक आइटम टाइट होती हैं कि आप हर किसी ने एडवर्टीज खरीद ली होती है, लेकिन किसी पे आप 10-20-30 भी कम कर सकते हो। तो ये होनेस्टी देखो रेडियो पे बोला जा रहा है, तो रेडियो पे तो आपको ब्रिंग द कस्टमर इन, आपको पहले झूठ बोलना पड़ता है कि आ जाएं, फिर आपको बताया वो सोल्ड आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम उनमें नहीं बिलीव करते
0: जी।
1: हम आपसे प्यार में बिलीव करते हैं और हमें मिल भी रहा है। तो ये मैं दोबारा वापस कह रहा हूँ, ये शालिनी शिवानी, हालांकि दोनों एक को बुलाओ तो दोनों नाम याद आते हैं, तो मेरी छोटी बहनें हैं और आपसे भी सीखा और इंस्पायर होके, और आपके क्योंकि आपके भी तो फ्रेग्रेंस में है ना, जो आपके सुनने वाले हैं वो भी उनसे भी वही खुशबू आती है, वो प्यार हमें देके जाते हैं,
0: थैंक यू सो मच
1: भी देके जाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू और आपके सुनने वालों को, और हम सभी एक दूसरे को मिलके ऐसे ही ग्रो भी करेंगे, साथ भी रहेगा, और आपके रेडियो को भी और ज्यादा लोग सुने, दूर दूर तक सुने, और घंटों वाला टाइम ज्यादा घंटों में बदल जाए, तो सारा यही हमारी भी यही दुआ रहती है और मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। और मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी फॉर द लवली यू नो मैसेजेस दैट यू ऑलवेज गिव अस योर ब्लेसिंग्स। सो middafurniture.com 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810। हैव अ ग्रेट वीकेंड पवन जी, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू जी।
0: और दोस्तों आपने यश विंडोज एंड डोर्स का भी नंबर मांगा, फिर से बता दें, अगर आप एक्सेप्शनली गुड विंडोज एंड डोर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो धर्म जी से राइट अवे बात करें, 416-732-3600, 416-732-3600। और इसी के साथ शालिनी आप लोगों से इजाजत मांगती है, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। शो के बाद हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के साथ
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Go Wild!
2: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure.
1: African Lion Safari.
3: Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
4: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
5: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी, और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
7: वाओ मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे। व्हाट इज द रीजन?
8: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
7: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
9: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनियंटली ओपन 24/7।
10: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स फैमिली डेंटिस्ट केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
8: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-893-3282।
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

0: आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करे 905-795-2299 या विजिट करे gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
1: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो Sanjeev Puri को आप call करेंगे free quote के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप insurance policy के बहुत high premium pay कर रहे हैं, तो policy review करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: हम होंगे आपके साथ हमेशा.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 & 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
4: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
8: Another Don Clean with the Don Dux.
9: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Dawn Platinum, the better grease getter.
11: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.

0: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299, या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर दा ये मैसेज जरा ध्यान नाल सुनो।
2: सस्ता सामान सस्ता नहीं, हाई एंड दा सामान मिले सस्ता। घूम के तो शहर सारा देख ले, तो रोहित ने ऐलान एह करता।
3: मीट रोहित द यस मैन एट रिट्स फर्नीचर प्लेनेट, 5200 डिक्सी रोड, मिसिसागा। टेलीफोन 905-232 रिट्स, दैट इज 232-7489। विजिट रिट्स फर्नीचर प्लेनेट .ca।
2: सस्ता सामान सस्ता नहीं, हाई एंड दा सामान मिले सस्ता।
4: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल, विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009, 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, सुइट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8585।

और बैक ऑन CMR एट 5 PM. और आज का दिन थोड़ा सा और खास हो जाता है क्योंकि इट अर्जेस यू ऑल, वी ऑल, टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, सारी वो एक्टिविटीज एंड सारे वो लोग बाग जो आपकी सारी एनर्जी यू नो खींच लेते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, छीन लेते हैं. एंड चार्ज योर सेल्फ टूडे, टेक योर पावर बैक विद सम सेल्फ केयर. जी हाँ, वो जो ट्रेन में आप लाइन पढ़ते थे ना, यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार हैं. और वो जो फ्लाइट्स में अक्सर एक पंक्ति हम सुनते हैं कि हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू हेल्प अदर्स, वो आज खास एंडोर्स करी जाती है क्योंकि आज है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे, जो सिर्फ आज ही करने का काम नहीं होता. एक्चुअली आप और हम सबको रोज ही अपना ध्यान रखना चाहिए. इनफैक्ट 24/7 सेल्फ केयर डेफिनेटली होना चाहिए, इसका कमिटमेंट होना चाहिए. फिर और बन जाना चाहिए हमें सलमान खान कि एक बार खुद से कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता. एंड कोइंसिडेंटली मैं देख रही थी कि टुडे इज अ नेशनल टेकीला डे एज वेल. वेल, मैं तो जूस वाली बची हूँ, बट वन ऑफ द मेनी वेज आप कह सकते हैं टू टेक अ ब्रेक फॉर ऑल दोज हु टेक इट एज वन ऑफ द मेनी वेज. एक और है CMR at 5 PM, जहां आप इस वक्त tune in है. And right now, this is Swati saying, be kind to yourself, give yourself the compassion you need. And yes, a solid musical chill pill this evening on CMR at 5 PM.

0: family travel ko banaye effortless with the Lexus TX 350 at Don Valley North Lexus. Spacious, refined, aur har drive ke liye ready. Quick refueling ke saath, bina charging delays ke. Welcome back offer or 10 MSDs ka advantage lijiye or lease kijiye TX 350 luxury package for 799 plus taxes per month with a 1.4% lease rate. Only at Don Valley North Lexus. Luxury ka experience lijiye bina wait ke. A proud member of Wings Auto Group.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट वेन्सऑटोग्रुप.com।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इंपॉर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: अब फायदा उठाएं जून के हॉट ऑट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%। साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट ऑट कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500। है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: कदे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप दे मुश्किल रस्तियां ते ट्रेलर टो कीता सी, ते आज उही कमाल दी टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोवर नू दोस्त दे कर ले जान ले है। टोयोटा टंड्रा, वड़े मोमेंट्स होन जा निकियां मूवमेंट्स, हर हॉल दे लई दमदार। ए टाइम है टोयोटा दा। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR $154 वीकली तो 36 मंथ्स लई 3.99% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। हाइब्रिड उपलब्ध है। विजिट shoptoyota.ca जा आज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

खाने के चट्टे बैठे ना अपने घर में भी होते हैं, जो ना तो पूरे बहन भाई होते हैं, ना ही पूरे पूरे दोस्त और ना ही पूरे पूरे रिश्तेदार। मतलब अलग ही कैटेगरी होती है इनकी, जो कहीं फिट नहीं होती और देखा जाए फिर भी सब में फिट हो जाती है। मतलब मानो तो ये सभी हैं वो, और ना मानो तो भी ये सभी हैं वो। एक्चुअली बस हम खुश होके मान रहे हैं या परेशान होके, यही होता है फर्क। अब पूछो मैं किसकी बात कर रही हूँ, कजिन्स रे, जिनके साथ हम बड़े भी होते हैं और कभी बड़े नहीं भी होते हैं। होता है खून का रिश्ता, पर जैसे साथ में दोस्ती का तड़का है ना। किसी भी फैमिली गैदरिंग में इनसे मिलने को ही तो दिल है करता। अपना कजिन्स का हर घर में एक ठो गैंग तो जरूर है होता। सो ऑन दिस नेशनल कजिन्स डे टुडे, अ रिमाइंडर कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के सारे नंबर्स कजिन्स वाले, जिनको हम बिजी डे टू डे लाइफ में इग्नोर भी मार देते हैं अक्सर, जो चुगली कर देते हैं पीछे से कई बार, पर साथ भी देते हैं बढ़कर। आज एक प्यारा सा मैसेज या डेडिकेशन और मेरी कॉल तो बनता है। ब्लेसिंग्स हैं भाई, वो भी हमारी लाइफ की, ग्रैटिट्यूड तो बनता है।

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेन। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
1: अच्छी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल करियर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रूहानी कॉलेज ऑफ हेल्थ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से सिर्फ एक साल का RMT हाइब्रिड कोर्स करने पर आप $15,000 पर मंथ तक कमा सकते हो। एलिजिबिलिटी 12th पास ओनली। इसके अलावा एक साल की ऑस्टियोपैथिक मैनुअल प्रैक्टिस, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरल हीलिंग साइंसेज का कोर्स भी है, जिसे करके $300 पर आवर तक आप कमा सकते हो। कोर्सेज तो और भी बहुत है यहाँ, बस आप अपना करियर बनाने का करो पक्का इरादा। विजिट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, यूनिट 21, Brampton, or call 905-731-2555. Visit RuhaniCollege.com.
0: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease कीजिए from $84 weekly for 60 months with zero down. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease कीजिए from $98 weekly for 60 months with zero down. Or up Tundra 4x4 Crew Max Limited Nightshade lease कीजिए from $208 weekly for 60 months. Great offers, सिर्फ Markville Toyota पर. More details के लिए visit करें Markville.com. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group. Men.

0: जेनेसिस मार्कम पर लग्जरी मिलती है एक एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। लीज कीजिए ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से अप टू 39 मंथ्स, या लीज कीजिए 2026 GV70 सिर्फ 2.9% से। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad. बस स्मार्ट बनने का एक और तरीका होता है कि आप उन लोगों की संगति में रहें, उन लोगों से मिलते रहें, उन लोगों की बातें ध्यान से सुने जो खुद स्मार्ट हैं, जिनमें एक्सपर्टीज है किसी चीज की, और उसके बाद आपको जो जानकारी मिलेगी एक सुलझे तरीके से, वो आपको भी स्मार्ट बनाएगी। इसीलिए हम कहते हैं गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल, क्योंकि सौरभ जी अपनी फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हैं। और एक तो बहुत अच्छा सा सेमिनार हम बहुत टाइम से अनाउंस कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस वीकेंड पे संडे को, यानी कि परसों, जहां पे आप अगर अटेंड करेंगे ना, तो ये जो लाइन है गेट स्मार्ट विद सौरभ सबरवाल, वो गेट स्मार्ट विद सेमिनार भी बिल्कुल फिट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो जानकारी मिलेगी ना, वो आपको स्मार्ट बने रहने में, स्मार्ट डिसीजन लेने में, एक अच्छा सा फ्यूचर लेने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। क्यों और कैसे, एक बार मैं फिर से उनसे आपकी बात कराती हूँ, सो दैट यू आर श्योर व्हाई यू शुड विजिट this seminar for sure. Sourav ji, welcome.
4: Ji Swati ji, thank you very much for the kind words first of all. Aur bilkul sahi bola aapne, this weekend Sunday ko hamara seminar hone ja raha hai, and basically we're very excited. It's been a great response, and it's been a very good as I said response to our seminar. Bahut sare log registered hain, we are eagerly looking forward to it. And again, the whole purpose of the seminar is to educate people, make sure they know what's going on. Hamari puri team hogi udhar, from mortgage brokers to our in-house lawyers, sare honge udhar. Every questions will be answered. We'll have a Q&A session. Agar aap first time buyer hain ya banna chahte hain, you're looking into the possibilities of where this market can take you. It is one of the most interesting and most educated the most informative decisions and seminar is something you need to really attend. Or something you should definitely take advantage of. Because बहुत noise है market में, बहुत कुछ कहा जा रहा है. We are in a bit of a rut right now, where stability is not very very it's not easy to come by. Because चाहे हम जितना भी अपनी तरफ से कर रहे हो, external factors have always pressured us into in a different direction from recovery. But that being said, life still goes on. Decisions still need to be made. Roti, kapda aur makan hamesha chahiye hota hai. So what you should do in this market, where you should go, what kind of decisions you need to make, you need to attend the seminar if you don't have answers to those questions yet. Abhi bhi kuch spots hum accommodate कर सकते हैं. 647-864-8844 is the phone number to call, and teamsabarwal.com is the website to visit. आप जाके register करिए. We'll do our best to get you inside the seminar. Like I said, it's been a fantastic response so far, and don't miss out. And if you do miss it out, then we'll have to wait for the next one.
3: Yes, बिल्कुल ठीक बात करी आपने का, और नेक्स्ट वन कब होगा हमें पता नहीं. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक छत के नीचे सारे एक्सपर्ट्स को लेके आना, उस जानकारी को कलेक्ट करना आपके लिए, जिससे आप जब आए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी जानकारी एक जगह दी जा सके. तो वो दिग्गजों को साथ लाना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना अपने आप में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो जब ऑर्गेनाइज हो गया है आपके लिए, सारा ग्राउंड वर्क डन है, आपको सिर्फ ये करना है, रजिस्टर करना है और वहां पहुंच जाना है, और फिर वो सारी चीजें आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप वहां सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इट्स एन इंफॉर्मेशन सेशन, तो आपके काम आने वाली है ये सारी जानकारी फॉर श्योर. अच्छा सौरभ जी, रजिस्टर करने के लिए आपके नंबर पे टेक्स्ट किया जा सकता है अभी भी? देयर आर सम रूम, आपने बताया कि कुछ जगह है अकोमोडेट किया जा सकते हैं, कुछ लोग जो मिस कर गए ऑलरेडी.
4: जी बिल्कुल, आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे को, या बेस्ट वे वुड बी टू रजिस्टर एट teamsabharwal.com और उधर जाके आप कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए एंड यू कैन रजिस्टर देयर एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अकोमोडेट यू एट दिस पॉइंट. बट यस, वी आर हैव वी हैव सम स्पॉट्स अवेलेबल व्हिच वी कैन अकोमोडेट विद. तो आप रजिस्टर करिए ऑनलाइन, दैट इज द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गेट इन.
3: चले, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है सेमिनार की इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी, हम इतने टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे. फाइनली इट इज हियर, द डे इज हियर एंड गुड लक टू यू एंड गुड लक टू ऑल द पीपल दोज हु आर गोइंग. आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और कम से कम डिसीजन तो बात की बात होती है, वो जानकारी जरूर
4: कलेक्ट कर पाएंगे. We are giving you the tools to make that decision and guide you the right way. Chalna apne khud hai, but we will give you, show you the right direction.
3: बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी होता है कि resources जो आपके लिए उपलब्ध हैं, available हैं, उन्हें आप use करें. This seminar is one of those. तो यह मैं सबको shout out यही दूंगी, आपने अब तक register नहीं कराया है तो एक बार website पे जाएं. कोशिश करें रजिस्टर करने की, हो ही जाएगा. जब वो कह रहे हैं थोड़ा सा अकोमोडेट हम अभी भी कर सकते हैं, और वेबसाइट इस teamsabharwal.com, वहाँ पे जाके आपको करना है, या फिर आप सौरभ जी को कॉल कर या टेक्स्ट कर सकते हैं. नंबर इज 6478648844. थैंक यू सौरभ जी एंड बेस्ट ऑफ लक.
4: थैंक यू वेरी मच.

0: हुंडई का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31 तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई .com या वुडवाइन एवेन्यू एंड डेनिसन स्ट्रीट मार्केट पर।
1: डॉन वैली नॉर्थ हुंडई,
0: a proud member of Wayne's Auto Group.
2: Movies released Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkad's Weekend Watch.
3: राइट, वीकेंड वॉच तो बताना बनता है। ये सेगमेंट बहुत जरूरी हो जाता है फ्राइडे के लिए, है ना। तो पहले इस हफ्ते मैं ये बता दूं कि बहुत सारे फ्रेश रिलीजेस हैं, जैसे कि लास्ट हफ्ते अकाल पड़ गया था ओटीटी पर भी और थिएटर पर भी। इस हफ्ते वो सारा सैलाब आ गया है, बहुत सारी रिलीजेस हैं थिएटर पर भी और ओटीटी पर भी। पर मैं कुछ चुनिंदा के बारे में बात करूं, क्योंकि सबके बारे में बात करना संभव नहीं हो पाएगा आज। तो जो मैंने चुनी है, पहले ओटीटी के बारे में बात करते हैं। ओटीटी पर मेनली तीन रिलीज हो रही है हिंदी में, एक डब्ड है जिसमें से, और दो का ट्रेलर तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मुझे लगता है मैं जरूर देखूंगी, जिसमें से एक पहले देखूंगी, मैं बताती हूँ कौन सी सीरीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं आदर्श बाल विद्यालय की। ये अमेजन प्राइम पे रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो कितना वैसी वाली फीलिंग आती है, पंचायत की जैसी थी, या जो अपना रेगुलर सा अपने आम जनता से कनेक्ट करता हुआ एक ड्रामा लगता है आपको, हम लोगों की से रिलेटेबल जो होता है, वैसा लग रहा था मुझे कुछ कुछ हद तक। इसमें के मैनन लीड रोल में है, और इसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं ज्ञानेश्वर त्रिपाठी का। तो कहानी उन्हीं की है, जो कि एक सरकारी स्कूल के सुस्त से प्रिंसिपल हैं, और सरकारी स्कूल है तो बदहाल भी है। जब सरकार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करती है, तो ये जो महाशय हैं, जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, ये भी ठान लेते हैं कि भाई हम भी अपने स्कूल को सुधार लेंगे। जिसके बाद अजीब गरीब और काफ़ी हिलेरियस सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। अब इसके रिव्यूज़ क्या कहते हैं, रिव्यूज़ ये कहते हैं इसमें स्कूल पॉलिटिक्स भी है आपको, लेकिन थोड़े कोर्की तरीके से है सारी। और रिव्यूज़ ये कहते हैं कि ब्रीजी है, फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी ड्रामा है, जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के एक साथ बड़े बूढ़े बच्चे और व्यस्त सब देख सकते हैं। और के मैनन है तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसे तो मज़ेदार से एक्टर हैं, बढ़िया से तो हर रोल में फिट हो जाते हैं। और स्क्रिप्ट कैसी भी हो, मैं ये कह सकती हूँ कि चैप प्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो जाती हैं ऐसी चीज़ें जनरली, फिर भी ये अच्छी लगेगी। ट्रेलर भी मुझे यही प्रॉमिस करता है, और मैं ये देखने वाली हूँ फॉर श्योर, पहले ये देखूंगी। सेकेंड वन इज़ मुसाफिर कैफे। नाउ इसमें विक्रांत मेसी हैं लीड रोल में, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बातचीत चलती रही, चर्चा चलती रही। तो ये है एक्चुअली दिव्य प्रकाश दुबे जी जो हैं राइटर,

जी है इसमें, रोमांस आपको भरपूर मिलेगा, अच्छा वाला चार्म है अपने आप में, और इट इज लाइक यू नो इट्स स्लो बट ड्यूअल टाइमलाइंस में तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। तीसरी जो मैं देख रही हूँ वो डब्ड वाली है। डब्ड जो है ये है, इसका नाम है पली पली चाट्टम्बी, हिंदी में डब्ड है और ये केरल की पृष्ठभूमि पर है। 1950 के टाइम की कहानी है, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के बेसिस पर है ये पूरी कहानी। एक्शन ड्रामा है जिसमें टोविनो थॉमस एक ऐसे पर्सन बने हैं जिसके जो थॉट प्रोसेस होता है, विचार होते हैं, वो सोसाइटी में जो भी शोषण चल रहा है एक वर्ग का उसको देखकर कैसे बदल जाते हैं। तो थोड़ी हैवी हो सकती है ये, इसको मैं फिलहाल सरकाऊंगी, मैं अभी नहीं देखूंगी। पर ओटीटी पर ये तीन आपके लिए है, मुसाफिर कैफे में बैठ के कॉफी चुस्की ले, या आदर्श बाल विद्यालय में नॉन आदर्श जो शिक्षा चल रही है उसको देखें, या पली चाट्टम्बी के साथ शोषित वर्ग को लेके थोड़े उदास हो पर थोड़े मोटिवेटेड भी फील करें फॉर द चेंज। मैं बताऊंगी थिएटर के बारे में भी कौन कौन सी रिलीजेस हैं, बट इन अ वाइल्ड फ्रॉम नाउ, स्टे ट्यून्ड।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: कदे क्लाइंट दे ऑफ ग्रिड कैबिन दे लई तुसी लंबर पहुंचाई सी अते अज ओही दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन कर दी सब तो प्यारी डिलीवरी ले आ रहा है एक नवा डॉल हाउस टोयोटा टकोमा हर खास डिलीवरी लई भरोसे योग पावर ए टाइम है टोयोटा दा लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $120 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.79% APR ते $4900 डाउन दे नाल हाइब्रिड उपलब्ध है विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, Ali

0: trending today is also hashtag Amelia Earhart. अब पूछो तो कौन थी वो? Well, बता देती हूँ. First female pilot थी जो चक्कर लगाओ, that is circumnavigate around the world. पहली female aviator थी to fly solo across Atlantic Ocean and set many other records. Now, one of the first aviator भी थी to promote commercial air travel. और उनकी बुक बेस्ट सेलर बुक्स में से रही है ऑन फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस. आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा. एंड फीमेल पायलट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक 99 उसका नाम है, उसके बनने में भी ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर रही है. कहते हैं बचपन से ही उनको एडवेंचर्स बहुत शौक था उनका. नेबरहुड एक्सप्लोर करते करते बचपन से पेड़ों पर चढ़ते चढ़ते, देन राइफल से चूहों को खदेड़ते खदेड़ते, पहाड़ियों पर से डाउन हिल स्लेजिंग करते करते, कब उड़ान भी भर ली पता ही नहीं चला. जैसे बच्चे गुड्डी गुड़ियों से खेलते हैं ना और फूल पत्ती ज्यादा पसंद करते हैं, इनको वॉर्म्स मौत से ये सब कलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता था. कहते हैं एक बार छोटी सी थी जब वो तो टूटे डिब्बे से बाहर निकली, होठ पे चोट लगी थी, फ्रॉक फट चुकी थी, पर बाहर आती बोली बड़ी एक्साइटेडली कि ओहो इट वॉज जस्ट लाइक फ्लाइंग. हमारे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में या होनहार बिरवान के हो चीखने पात, बस कुछ वैसा ही. इनके टोरंटो कनेक्शन भी है. पूछो क्या इनका इंटरेस्ट प्रॉपरली बढ़ा इसमें व्हेन शी केम टू कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन हियर, लाइक यू नो एयर फेयर की तरह था वो. वेल रिमेम्बरिंग दिस अमेरिकन लीजेंडरी आसमान की परी एमिलिया ईयरहर्ट ऑन हर बर्थडे टुडे, एक ये गाना तो बनता है.
1: के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.99% से। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, टोयोटा करोला भी इन स्टॉक है आपकी रोजाना ड्राइव के लिए। बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
1: Movies released Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkar's Weekend Watch.

राइट फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी एंड वीकेंड वॉच की बात हो रही है। तो ओटीटी की तीन मेजर रिलीज तो मैंने आपको बता दी, मुसाफिर कैफे और आदर्श बाल विद्यालय और एक और मैंने बताई थी डब्ड वाली। नाउ कमिंग टू द थिएट्रिकल रिलीजेस, इस बार 6 हिंदी की थिएट्रिकल रिलीजेस हैं। मैंने कहा था ना बाढ़ आई हुई है, पर 6 की 6 बहुत एंटिसिपेटेड वाली कैटेगरी में नहीं आती हैं। यू नो ऐसा लगता है कि ओके बजट सिनेमाज जो होते हैं दे आर फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्टेंट काइंड ऑफ थिंग, पर कॉन्टेंट पढ़ के भी बहुत एक्साइटिंग मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ का लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा, बाकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके बताती हूँ, पहले शुरू में आपको 3 बताती हूँ फिर 3 बताऊंगी। लेट्स बिगिन विद अनूप कपूर की उत्तर द पुत्र। अब ये कॉमेडी टाइप है, बेसिकली सरकैज़म है, जिसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि कर्मा ओवर वास्तु सुपरस्टिशंस पे आप जोर दें। अब इसमें जो वास्तु पे बिलीव करते हैं या जो वास्तु रन करते हैं एज अ यू नो प्रोफेशन या सिखाते हैं, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, इस फिल्म के पे भी मत जाइएगा, और जो नहीं मानते उसको फन की तरह ले सकते हैं। एनीवे कहानी अनु कपूर की, जो वैसे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और एक कोचिंग सेंटर दिल्ली में चलाते हैं, इनका नाम है फिल्म में राम तुतेजा, साईं राम तुतेजा। नाउ इनकी बैकग्राउंड बेशक साइंस की है लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी, विच इज़ ऑल्सो अ साइंस जो लोग मानते हैं, वास्तु शास्त्र में भी विच इज़ अ शास्त्र जो लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं, और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको अपनी लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे बोलते हुए। अब इनका एक ड्रीम होम है जो कि परफेक्ट 90 डिग्री नॉर्थ फेसिंग प्लॉट पे होगा, और वो उनका ऐसा मानना है इससे मेरी किस्मत पूरी बदल जाएगी। अब इसमें धीरे धीरे केओस होता है क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है वास्तु को लेके, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, सीट यहाँ होनी चाहिए, कुर्सी यहाँ होनी चाहिए। तो एवरीडे ब्यूरोक्रेसी, फैमिली डायनेमिक्स और यू नो उनका जो पुराना 80 साल पुराना घर था वो कैसे बदलने लगता है परफेक्ट कैलकुलेशंस को मीट करने के लिए, और उससे क्या क्या फनी हिलेरियस सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो लाइट हार्टेड है, क्लीन कॉमेडी है, रिलेटेबल भी है फैमिली कॉमेडी, क्योंकि हमें घर में ऐसे कुछ लोग मिलते ही हैं जो बहुत ज़्यादा बिलीव करके बिल्कुल कहते हैं ऐसे ही चलो ऐसे ही घर रखा जाएगा, कन्विक्शन पे बेस्ड चाहिए, और उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, साथ में पवन मल्होत्रा है, ब्रिजेंद्र काला है। एंड आई वुड से कि जितनी भी एक्शन फिल्म्स आ रही हैं आजकल उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए इट कैन बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिनेमा। इट बैलेंसेज ह्यूमर विद जेंटल मैसेज कि भाई वास्तु भी ठीक है या नहीं है, वट एवर आप बिलीव करते हैं, तो लेकिन कर्म पे फोकस करो भाई, कर्म पर। देन देर इज वन, ये थोड़ा साइड सैड सा सोशल ड्रामा है, द इंडियन स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस। अब ये स्लो पॉइजन की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे कहते हैं आजकल सब कुछ नकली है, इंजेक्शन लगा आता है, फ्रूट्स हो इतने मीठे फल, चीनी का इंजेक्शन लगता है, मिल्क है कहते हैं फेक मिल्क है, वेजिटेबल्स ये सब चीज़ों के ऊपर है ये। तो एक कहानी है इसमें एक मेजर की, आर्मी का मेजर, उसकी 7 साल की बेटी ब्लड कैंसर से ट्रेजिकली चली जाती है। नाउ शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि जितने भी वो उसे दूध पिला पी रही थी उनकी बच्ची या खाना खा रही थी, वहाँ पे पेस्टिसाइड कंटामिनेशन और केमिकल टॉक्सिन्स था, फूड एडल्ट्रेशन था, तो जस्टिस की डिमांड होती है भाई, और उनका साथ देती है इसमें एक लॉयर कांचल अग्रवाल जो बनी है, एंड एक डेंजरस सी लीगल बैटल करते हैं विच इज एक्चुअली अगेंस्ट कॉर्पोरेट केमिकल जायंट्स एंड सिस्टमेटिक निग्लिजेंस जो होती है। अब इसके भी रिव्यूज ओवरऑल ये कह रहे हैं कि वैसे तो पब्लिक हेल्थ टॉपिक है तो कंसर्निंग है, लेकिन ओवरऑल कहते हैं ओवर ड्रामेटिक है, मेलो ड्रामेटिक है, और जो कोर्ट रूम एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा फ्लैट है और बहुत हैवी है, प्रीची टोन भी है, तो कई बार लोग बहुत बोझिल लगती है। थर्ड वन इज 13 यार हूँ मैं। नाउ ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, इसको भी बहुत ज़्यादा रेटिंग्स और रिव्यूज़ नहीं मिले हैं, परेश रावल इसमें अकेले इसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म को। इसमें कहानी है एक लड़के की, केयर फ्री है, जो कि मुंबई काम करने जाता है और वो अपनी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, विच इज़ परेश रावल, उनके यहाँ रुकता है, वहीं पर स्टे कर रहा है। उन दोनों की इक्वेशन अच्छी है, परेश रावल की और इस लड़के की भी, बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और धीरे धीरे उनको परेश रावल की जो एक बेटी है उनसे वन साइडेड लव हो जाता है, जहाँ की पर जबकि परेश रावल अपनी लड़की के लिए रिश्ता ऑलरेडी तय कर चुके हैं। नाउ कहानी है कि कैसे क्या किया जाए ताकि यू नो उन दोनों के बीच की, तो हल्की फुल्की सी कॉमेडी है। ओवरऑल एक्टिंग में सिर्फ परेश रावल इज द वन जो इसको थोड़ा बचाए रखते हैं, पर बच फिर भी पाएगी या नहीं, आई हैव माई डाउट्स। वेल ये 3 है, और 3 बताती हूँ और वीकेंड वॉच आप सुनते रहे मेरे साथ। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन फिल्मी नुक्कड़।

0: एंड कल हमने आपकी बात कराई थी स्पेक्स एक्सप्रेस से, बहुत लोगों ने कहा कि भाई हमने सुना है क्योंकि हम सेगमेंट मिस कर गए, पर हमें बताया किसी ने कि स्पेक्स एक्सप्रेस पे इस हफ्ते डील्स हैं कुछ खास। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस हफ्ते नहीं हर हफ्ते होती है पहली बात, पर हाँ हर हफ्ते कुछ अलग हो सकती है। तो हर हफ्ते ध्यान से सुने, आपको जिस दिन लगे कि ये तो मेरे लिए बेस्ट है उस वीक जरूर चले जाए। पर मेरा सजेशन यही होगा, अगर आपको आई ग्लासेस या सन ग्लासेस चाहिए अपने लिए या अपनों के लिए, एनी टाइम इज अ गुड टाइम व्हेन यू गो टू स्पेक्स एक्सप्रेस, क्योंकि डील्स हमेशा बहुत अच्छी होती है, कलेक्शन सिलेक्शन हमेशा बहुत अच्छा होता है, और ब्रांडेड सनग्लासेस एंड आई ग्लासेस पर उनके पास फ्लैट डिस्काउंट होता है। ऐसा नहीं कि या इतने से इतने तक का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा भाई आपको, आप पता है आप जब घुस रहे हैं तो इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आई एग्जामिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है उनका, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला यूज़ करते हैं वो, जिससे कि बढ़िया से तरीके से हो जाए, एंड सभी इंश्योरेंस से डील कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो और भी मज़ा है, इंश्योरेंस नहीं है तो डील सुपर्ब है कि वैसे बहुत आनंद है। तो क्यों जाना चाहिए इस हफ्ते, वो मैं आपकी बात करवा देती हूँ राजन जी से। राजन जी वेलकम।
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपको और फिल्मी नुक्कड़ के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग
0: जी। गुड इवनिंग। मैं बस वही बता रही थी कि इस हफ्ते भी कुछ है, हमने कल भी कुछ डील्स डिस्कस करी थी, बट आई एम श्योर सब लोग एक साथ ट्यून इन नहीं होते हैं, तो जिन्होंने कल मिस कर दिया या जिनको आप रिमाइंडर देना चाहते हैं प्लीज बताएं इस हफ्ते वो क्यों आए।
1: बिल्कुल जी, सबसे पहले बताते चले कि जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास आज हमारी सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू लोकेशन के ऊपर तकरीबन 7 बजे तक है, लेकिन अगर आप आज नहीं आ सकते क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 18 हो चुके हैं, तो कल भी आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी जो रेजोल्यूशन वाली लोकेशन है वहां पर डॉक्टर होंगे। आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो एक ही नंबर है जी 9054608888। अब आई एग्जाम का बताता चलूंगा कि आई एग्जाम के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट है जिसमें OCT, टोपोग्राफी, रेटनोग्राफी, AR, NCT, स्लेट टैंप एंड विजुअल फील्ड, ये 7 अलग अलग मशीनें हैं जी जो आपका हर एक कोना चेक करते हैं, और जो भी रिजल्ट आते हैं डिजिटली डॉक्टर आपको एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आंख में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अगेन ऐसा आई एग्जाम आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए एक ही नंबर 9054608888। अब बात करेंगे जी ग्लासेस की, सन ग्लासेस, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस की। बहुत सारे लिसनर्स होते हैं जिनको होता है कि बढ़िया ब्रांडेड फ्रेम हो हमारे पास लेकिन प्राइस भी इनको सही मिले, तो उनके लिए बताते चले कि 2026 की समर कलेक्शन हमारे पास आ चुकी है जी। आपको गुच्ची के फ्रेम चाहिए, प्राडा के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के, डॉल्ची गबाना के, बर्बरी के या फिर वर्साची के, ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर एंड ब्रांडेड सन ग्लासेस के ऊपर आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी। अगेन बिल्कुल ठीक बोला कि वो नहीं है अप टू की आप जाएंगे और यहाँ पर 30% अनाउंस हो रहा है और वहां पर जाकर आपको सिर्फ
0: हेलो, मुझे लगता है कि हम
1: और...
0: जी जी आपकी आवाज कट गई थी, फिर से रिपीट करेंगे।
1: ओके ओके, तो ऐसे ही जिनको रेबन के फ्रेम चाहिए, अरमानी के फ्रेम चाहिए, माइकल कोर्स के, केट स्पेड के, मार्क जेकब के या फिर ह्यूगो बॉस के, पोलो के, ये टॉरी बट के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है जी। और साथ के साथ अगर आपको कैल्विन क्लाइन के फ्रेम लेने हैं, टॉमी हिलफिगर के फ्रेम लेने हैं, फैंटी के या फिर वैलेंटिनो के, तो फ्लैट 75% ऑफ दिया जा रहा है जी इन सभी ब्रांडेड फ्रेम्स एंड सनग्लासेस के ऊपर। और साथ के साथ स्वाति जी हमारा वैल्यू पैकेज, इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि वैल्यू पैकेज में आपको सेविंग बहुत होती है। क्यों? क्योंकि जब आपको ग्लासेस बना के देते हैं, सिर्फ ग्लासेस नहीं बना के देते, हम आपको एक प्रॉमिस भी करते हैं कि इसमें हम आपको 1 साल की सर्विस भी देंगे। आपके ग्लासेस कभी लूज हो जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं, कभी मिस अलाइन हो जाते हैं, या अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ये टूट जाते हैं, तो ये सभी ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। और जो हमारे वैल्यू पैकेज में फ्रेम्स हैं तकरीबन 30 से 35 ब्रांड नेम्स हैं जो हमने इसमें लिस्ट किए हुए हैं और तकरीबन 700 से 800 फ्रेम हैं। लंडन फॉग, लिवाइस, रैंगलर, वैन हिल्सन, एडी पावर, रूट्स, आइजोड, आप इनमें से कोई भी फ्रेम चूज कर लें। $300 की कीमत का फ्रेम इंक्लूडेड है जी वैल्यू पैकेज में। $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज ये भी इंक्लूडेड है वैल्यू पैकेज में। सो ये टोटल $400 की प्राइस बनती है जी, जो कि हम अपने लिसनर्स को ओनली $129 में दे रहे हैं। और अगेन जैसे मैंने बताया कि इन फ्रेम्स के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। ऐसे ही जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए तो एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हम आपको दे रहे हैं। ये $300 की कीमत के लेंसेज हैं प्लस $300 की कीमत का फ्रेम, 600 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को ओनली $258 में दे रहे हैं जी। प्लस आप अपने ग्लासेस के ऊपर कोई भी कोटिंग ऐड करवाना चाहते हैं तो सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ है। अगर आप अपने दो पेयर बनवाना चाहते हैं कि एक घर पे रख लें एक ऑफिस पे, तो पहले पेयर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ एंड दूसरे पेयर के ऊपर आपको कोटिंग 100% ऑफ यानी कि एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है। सो अगेन ये डील्स रेडी है तो हमारे लिसनर्स पहुंचे जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, गोल्डन एंड सील्स कह लें या कैनेडियन सील्स की इंटरसेक्शन, वॉलमार्ट वाला प्लाजा, और नंबर वंस अगेन 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं बताते चले कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्ट बुक करते हैं, चाहे आपका आईग्राम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो नंबर वंस अगेन 905-460-8888। और स्वाति जी जाते जाते मस्ती की रेलगाड़ी के लिसनर्स के लिए एक स्पेशल
0: फिल्मी नुक्कड़ के लिए
1: फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए जी एक स्पेशल डील। सॉरी, जो भी पहले 5 कॉलर्स हमें कॉल करेंगे उनको हम आज टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ देंगे। सो टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ लेने हैं तो हमारे लिसनर्स अभी कॉल कर लें 905-460-8888 905-460-8888।
0: चलिए थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी अच्छी डील्स लाते हैं राजन जी हर वीकेंड पे। मेरे ख्याल से बहुत लोगों की बचत होती है और बचत के अलावा एक रिलीफ भी मिलता है कि यू नो देयर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको क्वालिटी भी मिलेगी और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा सा कॉम्बो हो जाता है विद स्पेक्स एक्सप्रेस एंड राजन जी। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते आपसे फिर कनेक्ट करते हैं।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव करें। चूज करें लेक्सस आरजी या ईएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एंजॉय करें प्रीमियम ईवी एक्सपीरियंस मेड सिंपल। बाय ए फ्री लेवल 2 होम चार्जर, इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन और फर्स्ट ईयर ऑफ होम चार्जिंग रीइंबर्स्ड अप टू $1,000। प्लस रिसीव करें वन ऑन वन ईवी डिलीवरी सेशन एट योर होम और $500 क्रेडिट फॉर एनी प्रोटेक्शन पैकेज वैल्यूड एट $2,500। आज ही विजिट करें डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस .com। अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, Mustafa Zahid on August 22nd.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ. वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है. एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे. हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कम्प्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर. वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर. विजिट veinsautogroup.com.
4: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप. प्राइवेट स्टूडियो से नुक्कड़ इंडी पॉप.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $657 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स विद एन अमेजिंग 0.4% लीज रेट यूजिंग योर रिफंडेबल डिपॉजिट्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wings Auto Group.
1: Movies released Broadway's on. Kaun si web series should be binge watched? Agar hai confusion, to tune in for Nukkar's Weekend Watch. राइट, वापस हम इसी सेगमेंट में आ गए। फ्राइडे है तो बनता है इस वीकेंड की क्या क्या रिलीजेज हैं। तो ओटीटी पे मैंने बताया मुसाफिर कैफे एंड आदर्श बाल विद्यालय, जो मैं देखने वाली हूँ जरूर से। इसके अलावा थिएटर पर 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं, उत्तर द पुत्र विच इज अ कॉमेडी अबाउट वास्तु एंड कर्मा, एंड देन सेकेंड वन इज इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, कोर्ट रूम ड्रामा है अबाउट यू नो पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स का यूज इन फूड एडल्टरेशन और उसकी वजह से नुकसान हेल्प, और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही है, दोनों की ही खास नहीं हो रही है, बट या देन तेरा यार हूँ मैं के बारे में मैंने बात करी, इसकी भी तारीफ तो नहीं हो रही है, विच इज़ अ यू नो लाइट सी रोम कॉम टाइप कॉमेडी है जिसमें परेश रावल है। देन फोर्थ वन इज दुल्हनिया ले आएगी, यहाँ पे जाएगी नहीं है, ले आएगी है। कहानी है एक लड़की की जिसकी उम्र अच्छी 32 साल के करीब हो गई है और पिताजी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है उसके। अब उन पे प्रेशर है उस लड़की पर कि भाई शादी कर लो, उम्र 32 की हो गई तो शादी तो कर लो। पापा काफ़ी एंजाइटी में रहते हैं कि बच्ची शादी नहीं कर रही है, धीरे धीरे वो हाँ कर देती है, एक लविश सी वेडिंग प्लान हो जाती है। हालांकि सेरेमनी तक आते आते एक राज पे से पर्दाफाश होता है कि जो दूल्हा है वो तो फ्रॉड निकलता है। हाँ, अब उसके बाद कैओस होना ही है, हिलेरियस टर्न्स होते हैं और उसके बाद मॉडर्न डे स्वयंवर की तरह का एक परेड होती है वैकी प्रस्पेक्टिव ग्रूम्स की। तो ये थोड़ा सा फनी एंगल है विच इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल आई वुड से, बट देन कहानी है, फील गुड फैमिली एंटरटेनर इसे आप कह सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें इट इज़ मोर अबाउट फादर डॉटर रिलेशनशिप देन एनीथिंग एल्स। ठीक ठाक सी ये मुझे लग रही है पढ़ के, बट अगेन ये ऐसी फिल्में होती हैं जो आप ओटीटी का वेट करते हो, इसको थिएटर पे देखने नहीं जाते हो। इसके अलावा एक और रिलीज हो रही है इंद्रजाल। नाउ इंद्रजाल इज अ मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन एडवेंचर फिल्म है और ये कुछ कुछ इसको कई लोग तुम्बर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डिफरेंस काफ़ी है जो मुझे ट्रेलर देख के लगा। एनीवे ये फोकलोर पे बेस्ड है, एंशियंट फोकलोर पे बेस्ड है, जो कहते हैं ना कहानियाँ होती हैं लघु कथाएँ पुराने ज़माने की जो चलती थी, कुछ कुछ उसमें कहानी एक खजाने की जो छुपा हुआ है और वो किसी एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने ब्रिटिश एरा में छुपा दिया था, लेकिन वो हर साल सूर्य ग्रहण के समय हर 12 साल में सूर्य ग्रहण के समय वो रीसरफेस होता है। अब जो भी ग्रीडी होते हैं लालची लोग वो इस ट्रेजर की हंट में लग जाते हैं, घने जंगलों में जाते हैं और यू नो खंडरों में जाते हैं कि खजाना हमें मिल जाए, बट किसके हाथ आता है? किसी के हाथ नहीं आता मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे सुपर नेचुरल इल्यूजन्स इसमें होंगे, मिथिकल फोर्सेस होंगी जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं इस खजाने को और डार्क एंड एवरीथिंग। ये एक हॉरर माइथोलॉजी एक्शन टाइप ऑफ सिनेमा है। आई एम नॉट मच इन टू दिस काइंड ऑफ सिनेमा, बट या ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, ये मुझे थोड़ी अच्छी सी लग रही है, मैक्स मिन एंड न्यूज़ाकी। इसमें कहानी है मैक्स और मिन की जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ये जो ब्रेकअप होता है इस पे कस्टडी बैटल चल रही है, पूछो तो किसकी? एक बिल्ली की जिसका नाम है न्यूज़ाकी, ठीक है, और इसका नाम रखा गया था, ये कैट इन्होंने मिलकर बचाई थी और इसका नाम आफ्टर हायो मियाज़ाकी इसका नाम रखा था। तो ये जो ब्रेकअप के बाद बिल्ली मेरे पास और मेरे पास की कहानी है, लेकिन साथ ही इसमें कहानी और भी है, जैसे कि जो मिन मैक्स हैं वो जिंगल सिंगर बने हैं इसमें, उनकी मम्मी नहीं है लेकिन एक ही घर में पुराने 3 generations रहती हैं, जैसे कि दादा रहते हैं, पिताजी रहते हैं और वो खुद रहते हैं। जो पिताजी हैं मैक्स की कॉन्सर्वेटिव हैं, थेरेपी को बेकार की चीज़ समझते हैं, यू नो, और जो ग्रैंड पापा हैं वो उनकी एक अच्छी सी दोस्ती है नर्सिंग होम के एक रेजिडेंट से जो कि डिमेंशिया से सर्व कर में रह रहे हैं। तो कहानी मुझे लगता है इसमें बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा जैसे कहते हैं ना, एंड इट कैन बी अ स्वीट सी फिल्म जो देखी जा सकती है इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू वॉच इन थिएटर. बाकी बहुत सारे फेस्टिवल्स हो ही रहे हैं, समर्स हैं, यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स हो रहे हैं हमारे शहर में, हैपनिंग सिटी है भाई, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. इस बार ब्रैम्पटन की रथ यात्रा भी है, हर जगह सिटी की अलग अलग होने लगी है. पहले तो एक टोरंटो की होती थी, टोरंटो चाइना टाउन फेस्टिवल है, ऑसफेस्ट है, सुपर थ्री टोरंटो है, मिक्स टू है, मिक्स टोरंटो, क्वीन स्ट्रीट ईस्ट का स्ट्रीट फेस्ट है, ग्रूविंग इन द पार्क है, और बहुत सारे हैं. आपको बस घर से निकलने का मोटिवेशन हो अगर तो जगह बहुत है जाने के लिए, वरना मैं एज आई ऑलवेज से कभी कभी आराम भी.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है। एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $120 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.79% APR विद $4,900 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500, है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और
4: विजिट अमित। BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night

0: हुंडई का नेक्स्ट स्टार्ट्स नाउ सेल्स इवेंट चल रहा है डॉन वैली नॉर्थ हुंडई पर। अब सिक्योर करें साल के लोएस्ट रेट्स। हर कस्टमर क्वालिफाई करता है अप टू 1% रेट रिडक्शन के लिए या कैश परचेस पर $500 का बेनिफिट। ऑफर सिर्फ जुलाई 31 तक है। एट डॉन वैली नॉर्थ हुंडई वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट donvalleynorthhyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai, doing
2: a proud member
1: your
2: of
1: way.
2: Wayne's Auto Group.
3: और मैं एक चीज क्विकली बता दूं कि इस वक्त शुरू हो चुका है एक 6:30 बजे, क्योंकि शुरू हो चुका है और ये 9:30 बजे तक चलेगा। अगर आप बाहर हैं सड़क पर और मुझे सुन रहे हैं तो अपनी गाड़ी घुमाएं और मिसिसागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल में पहुंच जाएं। वहां पे आज से एक किक ऑफ एजेंडे की तरह एक फेस्टिवल का किक ऑफ है। फेस्टिवल वैसे 10 अगस्त से है लेकिन आज एक फ्री इवेंट है जिसका किक ऑफ आज हो रहा है, उससे रिलेटेड ही है, जिसमें मीट एंड ग्रीट रहेगा, पार्टिसिपेंट्स से मिलेंगे, जो भी प्लेज हो रहे हैं, 12 प्लेज हो रहे हैं, 10 अगस्त से शुरू होगा वो, उन सब के आर्टिस्ट होंगे, अपने प्ले की पिचिंग करेंगे वो, आप सुनिएगा क्या है, फिर अपनी पसंद से आप टिकट्स ले सकते हैं, ना भी लें घर आ जाएं उसके बाद एंड देन डिसाइड करें। और वहाँ पे बैंड है, क्रिसेंटो बैंड है और भी बहुत सारे बैंड्स होंगे और बहुत सारा प्रोग्राम है, खाना पीना हल्का फुल्का एंड यू नो एक अच्छी सी पार्टी है, प्री लॉन्च पार्टी जिसे हम कहते हैं, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल। आप जाएं, मिलें आर्टिस्ट से, पता करें, बैंड सुने, एक अच्छी सी पार्टी इंजॉय करें। अगर आप आसपास हैं उसी जगह के तो ज़रूर पहुँचें। वहाँ पे आपको पहुँचना है स्मॉल आर्म्स इंस्पेक्शन बिल्डिंग जो है 1352 लेक शोर रोड ईस्ट पर, मिसिसागा में। ये स्मॉल आर्म्स इंस्पेक्शन बिल्डिंग है मिसिसागा में, 1352 लेक शोर रोड ईस्ट। वहाँ पे आपको पहुँचना है। अगर आप निकले हुए हैं, म्यूजिक है, डांसिंग है, नेटवर्किंग होगी और आर्टिस्ट से भी आप मिलेंगे, प्ले कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिटेल्स पता चलेंगी। और आप चाहें तो फटाफट उनकी वेबसाइट पे जाके अभी रजिस्टर भी कर सकते हैं फ़ौरन से भी, या देख सकते हैं डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिस वेबसाइट पे जाना है वो है missisagafringe.ca या फिर savitri.ca पर जाइएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस फ्री इवेंट में। 10 अगस्त से हो रहा है ये फेस्टिवल शुरू, जहाँ पे होंगे बहुत सारे प्लेस, 12 प्लेस हैं लाइंड अप। मेरे ख्याल से टिकट्स आप टाइमली बुक कर लें।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: ਕਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਮਦਾਰ ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ ਇੰਜਨ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਲ ਹਾਊਸ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ, ਹਰ ਖਾਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ। ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $120 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.79% APR ਤੇ $4,900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कभी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के टफ रास्तों पर ट्रेलर टो किया था, और आज वही एपिक टोइंग स्ट्रेंथ बस लॉन मोअर को दोस्त के घर ले जाने के लिए। टोयोटा टंड्रा, बड़े मोमेंट्स हो या छोटी मूवमेंट्स, हर हॉल के लिए दमदार। ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स SR फ्रॉम $154 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 3.99% APR विद $5,800 डाउन। हाइब्रिड अवेलेबल। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Exclusively picked.

जमीन तो माँ होती है और माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। उपकार फिल्म के इस डायलॉग से वो सभी लोग रिलेट करते हैं जो भारत को मातृभूमि मानते हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में मनोज कुमार का नाम ही भारत था। असली नाम हालांकि इनका हरि किशन गोस्वामी था, फिर बचपन में इन्होंने फिल्म देखी थी शबनम, जहां हीरो का नाम मनोज था और उन्होंने तब भी सोच लिया था कि जब मैं ऐसा वाला फरिश्ता बनूंगा ना तो अपना नाम मनोज रखूंगा। तब उन्हें फरिश्ता का मतलब नहीं पता था, हालांकि ऐसा वो खुद कहते हैं। फिर उपकार फिल्म के बाद जनता ने भारत कुमार इनको नाम दे दिया। एक्चुअली फिल्में ही ऐसी बनाने करने लगे थे वो कि अच्छी खासी भारतीय पेट्रियोटिक फील देती थी। इनफैक्ट एज पर हिम इसकी वजह से जहां उन्हें बहुत सारा प्यार मिला जनता से, ही हैड अ बर्डन टू कैरी दैट आइडियल इमेज एज वेल जो पब्लिक ने उनकी बना ली थी। यू नो वो इमेज में कैद हो जाना जिसे कहते हैं। एक बार रेस्टोरेंट में सिगरेट पी रहे थे वो कि एक लड़की ने आकर उन्हें अच्छी खासी डांट लगा दी कि भारत होकर सिगरेट पीते हो, aren't you ashamed? और तब से ही got so conscious कि वो छुप छुप कर सिगरेट पीने लगे और फिल्मों में एक्ट्रेसेस के साथ काफी दूर दूर से ही सीन करते कि अजीब ना लगे, मतलब भारत वाली इमेज जो रखनी थी ना। सो रिमेम्बरिंग द लीजेंड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑन हिज बर्थडे टुडे, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद अ सॉन्ग जब वो रोमांटिक फिल्में भी करते थे। यू स्टे सेफ एंड स्माइलिंग।

0: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
1: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
0: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
1: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
0: दैट्स वंडरफुल।
1: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
0: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
1: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
2: प्राइड ऑफ मिसिसागा बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट, 35 डंडा स्ट्रीट वेस्ट, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा में। बारबेक्यू का असली मजा बारबेक्यू टुनाइट पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट। 9052680088, इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा।
3: मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी, अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मीठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन ओंटारियो की 5 लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वेरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट, दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। 5 लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 4169012810, इट्स 4169012810। या लॉग इन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
4: अगर आपको होलसेल प्राइस पे फर्नीचर खरीदना है, पायदार फर्नीचर खरीदना है, लेटेस्ट आप जो मॉडल्स हैं उनका फर्नीचर खरीदना है बेस्ट क्वालिटी में, तो मिठा फर्नीचर की किसी भी एक लोकेशन पे तशरीफ ले जाइए। मिसिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, ब्रामटन में 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, स्कारब्रो 1319 कैनेडी रोड और कैम्ब्रिज में 30 पाइन बुश रोड, लंदन ओंटारियो में 3075 वंडरलैंड रोड साउथ यूनिट डी। एक ही नंबर 4 और 5 लोकेशन के लिए 4169012810, mithafurniture.com इनकी वेबसाइट है। 5 लोकेशन है, बल्क में सामान आता है, कंटेनर्स आते हैं और बाज़ुकात फ्रोल मॉडल्स भी ऐसी जबरदस्त प्राइस पे आपको मिल जाते हैं कि हैरान कौन उसकी प्राइस होती है। 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट मिलता है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत है, ज्यादा तादाद में मंगवाते हैं, मार्जिन इनको भी मिलता है, जहर वही मार्जिन आप पे वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक बार अगर फर्नीचर आप अच्छा खरीदने का सोच रहे हैं, समर है, समर की स्पेशल सेल है, तो मीठा फर्नीचर की किसी भी लोकेशन पर तशरीफ ले जाइए। मेरे साथ मासद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
5: थैंक यू भट्टी साहब और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, अगर आप अपने घर को अच्छे पाइपबंद और किफायती, आई थिंक उर्दू ठीक बोल गया आज तो तीनों वर्ड भट्टी साहब
4: सही जी,
5: पर किफायती भी, कम प्राइस वाला भी अगर आपको चाहिए या अच्छा फर्नीचर कम प्राइस में चाहिए, तो मिड्डा फर्नीचर है। जैसे भट्टी साहब कहते हैं कि वॉल्यूम डिस्काउंट आते हैं, हमने अपने ऐड कराए मेपल वुड की, मतलब मेपल वुड तो कैनेडियन वुड ही बनती यहाँ है, लेकिन जैसे 5 लोकेशन की वजह से फिर हमें वॉल्यूम डिस्काउंट, उनकी भी शर्त थी कि 5 स्टोरों पे आप लगाओगे, मतलब चाचर मॉडल हमने लगाने की कोशिश करी। यू ड्राइंग इट बेसिकली वी मेक इट, अगर आपको जो हमने जो अगर मॉडल बने हुए हैं, बेसिकली बेड तो बेड साइज तो वही रहता है, लेकिन कई बार हेडवर्ड बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर चेंज करना है, हेडवर्ड में कपड़ा लगाना है, ड्रॉअर लगानी है, नहीं लगाना, मतलब साइज थोड़ा लंबा करना है, जो भी आप करना है जो कर सकते हैं
4: जी,
5: तो वो मिटासी ने ऐड करें। हमने सोफा में तो पहले हमारी इनहाउस प्रोडक्शन थी कि आप इंच टू इंच साइज हम बना के देते हैं। और एशले फर्नीचर का पहले हम बाजार से मिनिमम 10% तो कम होते थे, अब तो 12-13% कम है, कोई प्राइस को भी बीट करने को तैयार है क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है हमारे को और नए नए मॉडल ऐड कर रहे हैं। हाँ, प्राइस पॉइंट अगर आप ढूंढ रहे हैं, हमारे पास भी 999 का 3 पीस भी होंगे, सोफा लव चेयर 799 का भी होगा अगर वो आप ढूंढ रहे हैं। मार्बल टेबल, अभी भट्टी साहब कंटेनर आज चला है, बड़ा खुशी हो रही है बताने में, अभी आ जाएगा, अभी 50-60 दिन लगेंगे। 310 इंच की टेबल मार्बल की बनवा दी
4: हमने,
5: किसी बहन भाई की बनवाई तो उन्होंने कहा मिनिमम 5 बनाओगे तो बनाएंगे। तो अगर आपका, आप भी बड़े घर में रहते हैं तो सपोज करो, अब ये नहीं है जो सुन रहे हैं अभी बड़ा घर ही चाहिए, नहीं, हमारे पास तो 60 इंच की भी है और 72-72 इंच की भी है, 68 इंच की भी है। तो मिड्डा फर्नीचर जाना जाता है कि वायस वर्षा, ये भी ना हो कि जिस बहन भाई का बड़ा घर है वो कहे मिड्डा से तो मिलेगा नहीं और जो इसको छोटी चाहिए वो सोचे मिड्डा से मिलेगा नहीं। वी कैरी एवरीथिंग, आपको जो चाहिए हमारे पास, एक बार आए बाजार से और एज ए कस्टमर आए आप, बहन भाई के नाते आके और रिश्ता मजबूत होगा। हम कह रहे हैं कि आप हमें अजमाएं, हम 10-30% सस्ते हैं, जब आप आइटम टू आइटम कंपेयर करेंगे। बोलने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ सस्ता है, और कोई बहन भाई भी एडवर्टाइज कर रहा होगा तो वो सस्ता कह रहा होगा, पर हम कहते हैं आप मॉडल नंबर कंपेयर कर लें। ऐश लेके इसलिए बोलते हैं कि गूगल पे प्राइस आ जाती है, होम एलिगेंस की गूगल पे प्राइस आ जाती है, प्लस की माइकल मिनी की वहां पे प्राइस आ जाती है जब आप मॉडल नंबर डालते हो। और हम सस्ते भी आपके प्यार की वजह से, अगर आप वॉल्यूम ना देते, साथ ना देते, पांच लोकेशन ना होती तो हमें डिस्काउंट मिलता ही नहीं, आपकी वजह से मिल रहा है, आपको वापस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने, मैंने कल कहा था, कई बार हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, अभी एक हमारा मॉडल है जैसे अभी कहा कि कंटेनर बुक करे हुए हैं और 50 दिन में आना है, तो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है हम चाहते हैं कि जगह भी चाहिए भट्टी साहब और पैसे भी चाहिए आपको, तो उसे लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब लिक्विडेट करते हैं फिर मार्जिन नहीं देखते, फिर सोचते हैं अगर 1000 वाला 950 में भी जा रहा है तो जाने दो, ताकि आपको जगह भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। ये देखो ये है, जैसे आप फैमिली रूम में बैठ के बात कर रहे हैं कि आप बिजनेस कैसे करते हो, आप भाई दोनों डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो रेडियो पे ऐड भी वैसे ही करता हूँ। तो हमने एक बेड लगाया, बेड ड्रेसर मिरर और एक नाइट टेबल हमारे पास 10 है 1599 का, मैट्रेस फ्री है और हमारे पास 4 नाइट टेबल भी एक्स्ट्रा है। अगर कोई मेरे ख्याल 2 तो भाई ले गए, अगर 2 बहन भाई और भी फायदा उठा सकते हैं, नाइट टेबल भी फ्री है क्योंकि फिर किसी काम आना नहीं, 2 नाइट टेबल जो एक्स्ट्रा है तो वो भी फ्री है आपको, मैट्रेस भी उसके साथ फ्री है और एक गिफ्ट भी कॉम्प्लीमेंट फ्री है। और लेकर वाला भी हमने एक बेड ऐसे लगाया है, कैनेडियन मेड सोफा लव सीट हमने एक लगाया है। तो आप आए किसी भी लोकेशन पे आए, मिड्डा फर्नीचर की ब्रम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, कैम्ब्रिज, लंदन, और निराश तो आपको जाने नहीं देते, जो मुनासिब होता है वो डिस्काउंट करके देते हैं। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 नंबर है। थैंक यू वेरी मच,
4: बहुत शुक्रिया मैम साहब, नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए 416-901-2810 रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को 30 रोज में सरकारी घर खाली करने का नोटिस दे दिया है और कहा कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद में सरकारी घर कैंसिल किया था, आपका इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट तबादला हो चुका है। नोटिस के मतन में यह भी कहा गया कि आप घर खाली करने के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है, नोटिस की मदद घर कैंसिल होने की तारीख 3 जुलाई से शुरू होगी। जराय का कहना है कि ट्रांसफर के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने पेशावर में घर नहीं लिया था, वो इस्लामाबाद का घर ही रखने का फैसला किया था। पता नहीं टेक्निकली कानूनी तौर पर वो रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना जब आपके दिन अच्छे ना हो तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
6: कभी चेहरे कभी आंखों से बयां होता है, इश्क को लाख छुपाओ ये आया होता है, याद जब उसकी मेरे दिल में कभी आती है दर्द होता है, मगर दर्द कहां होता है, वो जो करता है बहुत अपनी अना के दावे, उसके माथे पे भी सजदों का निशान होता है। मैं रजी उससे अकेले में बहुत लड़ता हूं, हिजर में भी तो रफाकत का गुमा होता है। कभी चेहरे कभी आंखों से बयां होता है, इश्क को लाख छुपाओ ये आया होता है।

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर जहां केरला वैद्य रत्ना पीवे राज जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं खानदानी वैद्य हैं जो नब्ज देह के बीमारी का इलाज करते हैं हजारों मरीज उनके इलाज से सेहतयाब हो चुके हैं अस्थमा एलर्जी स्किन प्रॉब्लम कमर या घुटनों में दर्द आर्थराइटिस हेयर प्रॉब्लम गैस प्रॉब्लम अल्सर लेडीज प्रॉब्लम वेट लॉस और हर तरह की बीमारियों के इलाज के माहिर हैं ब्रैम्पटन में रابطے का नंबर 647-327-8111
2: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003 सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं केरला वैद्य रत्ना पीवी राज साहब खानदानी वैद्य हैं नब्ज देख के बीमारियों का इलाज करते हैं और जड़ी बूटियों से इलाज सदियों से लोग वो हर्बल से इलाज कर रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव इलाज है बगैर साइड इफेक्ट के आप सेहतयाब हो सकते हैं रابطے के लिए इनका नंबर नोट कर लें 647-327-8111 647-327-8111 वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम करेंगे वैद्य जी वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो
3: नमस्ते जी
2: आजकल वेदर में काफी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है कभी सर्दी है कभी गर्मी है धूप है छांव है बारिश है तो ऐसे में हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहें
3: आपने लिजरेंस के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है अभी कुछ दिनों से इधर ओंटारियो में भी वेदर भी उतना ठीक नहीं है एक एक दिन थोड़ा सा ठंड लगता है एक एक दिन थोड़ा गर्मी लगता है एक एक दिन थोड़ा सा बारिश गिर रहा है तो लास्ट वीकों से थोड़ा सा एयर भी पोल्यूटेड हो गए ये मौसम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाता है एक्स्पेशली लोगों को कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज के ऊपर ब्रीथिंग इश्यूज के ऊपर इफेक्ट हो जाता है आस्थमा पेशेंट्स के लिए भी ये वेदर बहुत खराब है और ये वेदर में लोगों को ऑटोमेटिकली बोन्स भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है जॉइंट पेन बैक पेन नी पेन ऐसा आर्थराइटिस भी थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है इसीलिए सभी लोग ये वेदर में थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा और पानी भी थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना है एटलीस्ट 2-3 लीटर पानी एवरीडे पीना है वो भी थोड़ा सा लुकवार्म वाटर जैसे पीना है
2: नंबर नोट कीजिए 647-327-8111 647-327-8111 वैद्य जी बहुत शुक्रिया आपका ऐसे में हमारे जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं वो काफी मुश्किल का सामना करते हैं उनके लिए प्लीज कोई सजेशन दीजिए
3: दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल 60% पीपल दे आर सफरिंग विद आर्थराइटिस कुछ लोगों को घुटनों में पेन होता है कुछ लोगों को कमर में होता है कुछ लोगों को शोल्डर में कुछ लोगों को नेक में तो कुछ लोगों को सायाटिका का प्रॉब्लम कुछ लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम तो कुछ लोगों को आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस तो इसका कारण अलग अलग हो जाता है लोगों का वीक इम्यूनिटी का कारण से भी होता है ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है उसका कारण से भी होता है नर्वस सिस्टम थोड़ा वीकनेस होता है उसका कारण से भी होता है कुछ लोगों को वेरिकोस वीन्स भी होता है वो भी एक प्रॉब्लम है ओवरवेट ओबेसिटी दैट इज ऑल्सो मेन प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड नाउ सो ओबेसिटी का कारण से भी होता है कुछ लोग ने नीचे गिर जाता है तो उसका कारण से भी हो जाता है मसल्स भी पकड़ता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है और घुटनों में कुछ लिगमेंट होता है ना कार्टिलेज वो शॉर्टेज होता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है तो इसका कारण से लोग चलने में उठने में बैठने में बहुत तकलीफ होता है रेगुलर काम भी होता है ना वो भी कर नहीं सकते तो इसका कारण से बहुत लोगों को रात को नींद भी नहीं मिलता है बहुत तकलीफ होता है सर्जरीज नी रिप्लेसमेंट ऐसा भी होता है तो इसके लिए हमारे पास तो बहुत अच्छा दवाई केरला में तो हम हमारा हेल्प से बहुत अच्छा जड़ी बूटियों का दवाई बनाता है तो दवाई बना के देता है वो दवाई खाने के बाद कुछ ऑयल्स भी होता है वो भी देता है तो उसके बाद दुनिया में सभी लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है हमारा दवाई के साथ हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए वीकनेस के लिए और कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है तो उसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है और वेट लॉस के लिए लिवर इश्यूज होता है ना फैटी लिवर उसके लिए हेयर का प्रॉब्लम होता है ना उसके लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है ना उसके लिए डायबिटीज के लिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए माइग्रेन के लिए सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है
2: वैद्य जी थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं थैंक यू वेरी मच नंबर नोट कीजिए अभी कॉल कर लें 647-327-8111 647-327-8111 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM आपको ले चलेंगे ग्लोबल एडवाइजरी इंक के ऑफिस नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट की ग्रांट जो वापस नहीं करनी आपको अब बस बहुत कम वक्त रह गया है डिटेल उन्हीं से लेंगे नंबर आप नोट कर लें क्योंकि इंटरव्यू के फौरन बाद आप कॉल कर लीजिएगा 264-317-5437-264-317-5. Nagpal ji, welcome you in Vere Pakistan, Toronto.
4: थैंक यू वेरी मच जी, सभी को सलाम.
2: बहुत शुक्रिया. रोज मेरा एक ही सवाल, वो जरूरी इसलिए है कि क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो अभी शायद ये लास्ट वीक है और उसके बाद ग्रांट खत्म हो जाएगी.
4: बिल्कुल, ये सही बात है, पूरी बस भर चुकी है.
2: अच्छा.
4: आखिरी ट्रिप है ग्रांट और लोन का, और मतलब क्या कहते हैं, बस मतलब पूरा क्लासरूम भर चुका है.
2: हाँ,
4: तालीम हासिल करने के लिए पूरा क्लासरूम भर चुका है. अगर आप रह गए हैं, तालीम हासिल करें. हुकूमत आपकी तालीम की फीस डायरेक्ट कॉलेज को देती है, आपको अलग से 30 से 100,000 डॉलर आपके खाते में देती है हुकूमत. बैंक नहीं देता, इतने मेहरबान नहीं है आपके बैंक.
2: सही.
4: और फंडिंग हासिल करें, और जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में भी ग्रांट्स है.
2: ठीक हो गया. 4372643175. अच्छा, जाहिर है आप बता रहे हैं कि इसमें पढ़ते हैं लोग, स्किल हासिल करते हैं, तो वो स्किल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आपको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है, पढ़ा भी रही है, आपको स्किल भी दे रही है और घर बैठ के दे रही है, ऐसा ही?
4: बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है. 2018 में मैंने भी कुछ पढ़ाई करी थी.
2: अच्छा, गुड.
4: तो फिर लाइक धीरे धीरे वी ग्रो अप, राइट? तो इसलिए आप स्किल हासिल करें. आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं. उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर, आप घर के कंफर्ट से फुली ऑनलाइन 2 से 3 घंटे क्लासेस अटेंड करें. एग्जामिनेशन नहीं है, आसान से असाइनमेंट्स है. फंडिंग फंडिंग ग्रांट ग्रांट ग्रांट हासिल करें. $500-$500 की बात नहीं हो रही यहाँ पे. यहाँ पे बात हो रही 50,000 से $1,00,000 की आपके खाते में.
2: सही. 4372643175. अच्छा, बताइएगा कोई एज लिमिट है, क्या कोई खास डॉक्यूमेंट चाहिए, या कोई जैसे वैसे आप लोगों ने बताया हाउस वाइफ भी हो, उबर टैक्सी ड्राइवर सभी लोग ले सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा कंप्लीट कर देगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्या है.
4: PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, कहीं भी ओंटारियो में रहते हैं. स्कारब्रो मार्कम से आपके बड़े क्लाइंट्स को हम असिस्ट कर चुके हैं, जो फंडिंग ले चुके हैं. हमें 1.5 साल हो गया आपके साथ एडवर्टाइज करते हुए, एंड बहुतों को हम असिस्ट कर चुके हैं. और इसमें फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, नो एज लिमिट, पेंशन पे है एलिजिबल है, नो क्रेडिट चेक, क्रेडिट स्कोर आपका 0 भी है वो भी आप एलिजिबल है.
2: अच्छा.
4: फंडिंग आपके खाते में आती है,

0: में आपके खाते फंडिंग आती है तब आप लोग अपनी ईमानदारी से हमें हमारी फीस देते हैं। आठ साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, आज की छह बंदों की फंडिंग उनके खातों में टू टू करके गिर चुकी है
1: और डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट के ही अकाउंट में जाती है फीस, जो भी
0: क्लाइंट है ही नहीं।
1: ठीक है, 4372643175 4372643175 अभी कॉल कर लीजिए, ये लास्ट मौका है आपका, इससे फायदा उठा लीजिए। नागपाल जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, फिर बात करते हैं। 4372643175 4372643175 पे कॉल कर लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सऊद शकील को अब शामिल किए जाने का इम्कान है, वो अनफिट तो नहीं थे सऊद शकील, शायद उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। अब्दुल्ला फजल कमर की इंजरी के बायस जो है, जब उनका एमआरआई वगैरह किया गया, कमर के निचले हिस्से में इंजरी थी, तो अब उन्हें जो है रीहैब के लिए कहा गया है और वो पाकिस्तान वेस्टर्न के दरमियान दो मैचों पर मशमिल सीरीज के लिए तो नहीं शामिल, शायद इंग्लैंड के लिए भी ना शामिल हों। और कल इसका आगाज हो रहा है और मैच का, और कैनेडियन वक्त के मुताबिक 10 बजे सुबह जो है मैच का आगाज होगा।

0: Red Pakistan Toronto CMR 101.3 FM ek bar phir aapko le chalenge Midha Furniture Wholesale Gallery mein Saga Brampton Scarborough Cambridge London Terry mein panch location se aapko serve karte hain ek hi number panchon location ke liye 416-901-2810 midhafurniture.com inki website hai mere sahab welcome Yogendra sir
1: Toronto ke sunne wale sabhi behan bhaiyon ko meri गुड इवनिंग नमस्कार दाब सत्रीकार मैंने पिछले लिंक में कहा था समर सेल है आप सभी बहन भाइयों बड़े बहन भाइयों के आशीर्वाद छोटों के प्यार से पांच लोकेशन से हम आपकी सेवा करते हैं मिड टू हाई एंड फर्नीचर बेचते हैं मॉडल नंबर इसलिए मॉडल नंबर कह के आपको प्राइस कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप हमारा इम्तिहान लेंगे तो हम आपके टेस्ट में इम्तिहान में पास हो जाए और लेकिन आजकल इकोनॉमी थोड़ा स्लो है हर बहन भाई डील देखो डील लेना भट्टी साहब मैं भी अगर कोई चीज लेने जाऊं ना बंदे को बंदा कहता है पिज्जा लेने जाओ डिपिंग सॉस भी मतलब मेरे ख्याल कुछ सेंटों की होती है तो कई बार वो ही कह देते हैं फ्री है डिपिंग सॉस में मतलब और हमें खुशी मिलती है डील मिल गई डील अलग चीज है हम भी करते हैं वो कि आपने कोई 4000 का सामान लिया आपने कहा नहीं नहीं भाजी हम तो 3600 देंगे हमें भी वो 600 बच रहा था हमने कहा चलो 400 बच रहा है 200 बच रहा है वो अलग बात है लेकिन वो मैं जो बताने की कोशिश करूँ कि 299 का जो सेक्शनल मतलब चाहे हमने डिस्काउंट करके 299 का लिया फिर एक 599 वाला फिर एक 999 वाला तीनों अलग अलग मॉडल है अब 999 वाले को कंपेयर करोगे तो हम सस्ते हैं 299 वाला बाजार में 350 का हो सकता है मिल रहा हो 400 का मिल रहा हो हमारा 999 वाला या कोई एक आधी आइटम ऐसी भी हो सकती है जो हम 1000 की बेच रहे हो और कोई बहन भाई और उससे 950 की बेच रहा हो तो हो सकता है हम एक लाते हो मतलब इतना हम वी आर नॉट द एंजल ऐसा भी हमें नहीं प्रूव करना चाहिए लेकिन 95% आइटम जो है हम कंटेनर में लाते हैं क्यों इसीलिए हमें कुछ कॉन्फिडेंस है लेकिन हाँ हो सकता है कोई एक आइटम कोई और बहन भाई ले आया हो वो कहे मेरे को मेरी बहुत बिकती है जैसे वो 299 वाला सेक्शनल है हम नहीं लाते हम कंटेनर नहीं लाते लेकिन अगर कोई बहन भाई कंटेनर लाए वो 250 का भी बेच सकता है तो पॉसिबल है लेकिन एशले के जो आइटमें हैं या जो चीयर्स के रिक्लाइनर हैं वो चीयर्स के भट्टी से पांच पांच रिक्लाइनर पांच कंटेनर लेने पड़ते हैं जैसे टॉप ग्रेन जेनुइन लेदर जब लेना पड़ता है फिर वो बाजार जो बड़े स्टोर हैं क्योंकि हर स्टोर पे आपको मिलता नहीं बड़े स्टोरों से 30-40% हम सस्ते हैं तो ये सब डिटेल इसलिए बताते हैं कि ताकि हमारा जो रिश्ता है वो जो बना हुआ है वो मजबूत हो जाए जिनसे नहीं बना उनसे बन जाए तो आपको टोटल कह रहे हैं कि हमें कोशिश है हमारी कि चाहे वो आप सस्ता कुछ ढूंढ रहे हैं 299 वाला हमारे से वो भी सस्ता होगा एक बेड है 249 का हर बहन भाई बेचते हैं हम 249 का ही बेचते हैं प्राइस हमारी कम नहीं हुई लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि उसमें फोल्डिंग रेल है भट्टी साहब फोल्डिंग रेल अब सॉलिड वुड की तो बन नहीं सकती जो रेल फोल्डिंग होती हमने उसी रेल को सॉलिड वुड बनाया हमारी कॉस्ट बढ़ गई $50 लेकिन हमने ली नहीं तो सस्ते हो गए आपका पायबंद ज्यादा हो गया आपके लिए पैसे में बचत नहीं हुई बेड देखने में दोनों सेम है फोल्डिंग

0: बजाय आपको सॉलिड रेल दे दी। तो हमारी कोशिश है कि मेरे बहन भाई के घर कोई फर्नीचर जाए तो थोड़ा पायबंद भी रहे, अच्छा भी चले, तो हमें तभी आपका प्यार मिलता है और हमें वो मिलता भी रहना चाहिए। आए हमें अजमा के देखें, हमें अपना के देखें, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810।
1: वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन, 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस, 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन, 6473217444, 6473217444।

0: ICC Immigration, RDFI, MDFI उनकी बड़ी टीम फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम टू डेकेड से आपको सर्व कर रहे हैं। कोई भी आपको इमिग्रेशन का मामला हो एक बार आप इनसे रब्ता कीजिए 905-461-2424 मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है MD भाई, खुश आमदेद कहेंगे। MD भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
1: अर्शद भाई बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को MDRDA की जानिब से ICC इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर।
0: बहुत शुक्रिया, कुछ अपडेट दे दीजिए इमिग्रेशन के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं?
1: अर्शद भाई इस वीक में अच्छी अपडेट्स ये हैं कि हमने ड्रॉज देखे हैं जी। सो हमने एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ देखा है, 2000 इन्विटेशन दिए गए हैं एट एफ 405 सर तीन, उसके बाद PNP का ड्रॉ आया। सो ये हैपनिंग वीक रहा है, फ्रेंच स्पीकर्स के ड्रॉ आए हैं, सो ये हैपनिंग वीक रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओंटेरियो PNP ने अपनी एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी है, सो अब एप्लीकेशन PNP की भी ली जा रही है। सो PNP ने नया पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसके हिसाब से अब अगर आपका एम्प्लॉयर सपोर्ट करता है तो ये एप्लीकेशन आपकी अब सबमिट की जा सकती है।
0: सही, 905-461-2424। और आप जो अमेरिका के लिए कुछ सर्विसेज दे रहे थे, थोड़ा समय चाहूंगा वो बता दें।
1: बिल्कुल अर्शद भाई, उसके बारे में जरूर बात कर सकते हैं। अगर कोई भी दोस्त, कोई भी भाई बहन कोई US मूव करना चाहता है टेम्परेरीली या परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, मतलब ग्रीन कार्ड के ऊपर, तो E2 वीजा और L1 वीजा बहुत अच्छी ऑप्शंस है। L1 में बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो आप उस बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए US जा सकते हैं, और आप पहले वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद आप 2 साल के लिए बाद तकरीबन 18 महीने 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं PNP अपनी एप्लीकेशन अप करने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए।
0: ठीक,
1: तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। बट अगर आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं है, आपके पास प्रूफ्स नहीं है, तो देन E2 वीजा बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं 1 से 1.5 लाख USD और कोई भी बिजनेस पिक करते हैं। ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा ज्यादा होगा, बट वहां पे हमने ये देखा कि पॉपुलेशन की वजह से, इकोनॉमी की वजह से वहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़िया है। तो कोई भी दोस्त अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो हमारी टीम से राफ्ता करें, एंड वी विल गाइड देम। कल अकेला बिजनेस के लिए, एस्टैब्लिश के लिए नहीं, इमिग्रेशन के लिए, इवन फाइनेंसिंग के लिए भी हम हेल्प करते हैं। और नंबर एक ही है 905-461-2424।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका एम भाई, फिर नेक्स्ट वीक तफसील से बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नंबर नोट करिए आप 905-461-2424। आप चाहेंगे इजाजत, दुआ में रखेगा याद, हौसला निहारना बल हौसला भी कहने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे के बाद बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे आपसे मुलाकात होगी, वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मौला।